उधार श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। यह हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

से शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
6: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है सादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवद गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: राम राम, दो सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नाचिस हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता हूं, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें होती हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पढ़ाने का जब जिक्र हो ही जाता है तो जाहिर सी बात है कि दिमाग में एक छवि बन जाती है कि कोई हमारे साथ मेंटर जुड़ रहे हैं, गुरु जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर जुड़ रहे हैं। तो चलिए, मैं ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराता, लेकिन और भी बहुत कुछ क्वालिटीज हैं उनके पास, जैसे कि वो 3 बुक्स उनकी पब्लिश हो चुकी हैं, मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन 2014 में टॉप 10 में आप रह चुकी हैं, और आप हैं मेरे साथ डॉक्टर प्रिया सचदेवा। तो मैम, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू सो मच गगन जी फॉर हैविंग मी हियर।
3: ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी मुलाकात हो पा रही है, बातचीत हो पा रही है, और अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर। मैंने आपके बारे में तारुफ कराया है अपने लिसनर्स को, मुझे लग रहा है कहीं कम तो नहीं है या कुछ और आपने छुपा के रखा हुआ?
4: गगन जी, ये तो आपका बड़प्पन है, आपने इतना कुछ बताया मेरे बारे में, बट एट द सेम टाइम यही मैं शेयर करना चाहूंगी कि शुरू से लेकर अंत तक मैंने बहुत ही मेहनत और बहुत ही शिद्दत से अपनी चीजों को चाहा है। और इस शिद्दत ने मुझे यहाँ पे लाके खड़ा किया है।
3: Great.
4: और कई सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है ये सब। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने छोड़ी हो, उसमें गाना गाना, उसमें शोज करना, उसमें पढ़ाई करना, उसमें फर्स्ट आगे दिखाना,
3: Nice.
4: उसमें रोल मॉडल बनना दुनिया के लिए। तो ये सब कुछ मैंने करके बहुत ही तरीके से देखा, अंदर घुस के देखा कि वाकई जन्नतें होती क्या हैं।
3: एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो ये जो सफर आपका रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सालों की मेहनत है, कितने सालों की मेहनत है, कब आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, कब आपको लगा कि मुझे एक प्रोफेसर बनना है, कब आपको लगा कि मुझे राइटिंग में जाना है, बुक्स लिखनी है?
4: छोटे होते से बड़ा अरमान था कि मैं सर्जन बनूं। तो तब डॉक्टर खेला करते थे, छोटे थे, 11th 12th में मेडिकल लेने की कोशिश की, बट हालात ऐसे बने कि कॉमर्स ली। उसके बाद कॉलेज करने वाले थे, कॉलेज करे तो उसके बाद लगा कि नहीं, अब कुछ अपना शुरू करते हैं, या क्योंकि हमेशा से ये जरूर था कि प्रिया सचदेवा से पहले डॉक्टर लगना चाहिए। तो पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, अभी 10 ईयर्स रुकते हैं, 10 ईयर्स रुकना पड़ेगा, मेडिकल लाइन बहुत ही, यू नीड टू स्टडी वेरी हार्ड, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई और आज आप सबके सामने ही है। करते करते करते करते उसमें बस लोगों का साथ मिला, बहुत अच्छे गुरुओं का हाथ मिला, और बहुत आशीर्वाद रहे साथ में। वो कहते हैं ना, जब आपको किसी चीज की तहे दिल से चाह होती है तो आपके सामने गुरु अपने आप आ जाता है।
3: बहुत गुँ, बहुत गुँ।
4: तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, और बहुत अच्छे गुरुओं ने मुझे बहुत लंबे समय तक अच्छी गाइडेंस में यहाँ तक पहुँचाया है।
3: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
4: तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज भी वो जहाँ भी हैं, अगर वो सुन सकते हैं तो उनको और जितने लोगों ने प्यार दिया और अपना साथ दिया, रातों को जाग जाग के वो पढ़ाइयाँ की हैं जहाँ तक अब आज हम पहुँचे हैं।
3: नाइस, नाइस। गुरु और शिष्य का जो एक संबंध है, जो बॉन्डिंग है, उसके बारे में मैं आपसे जरूर जानूंगा, क्योंकि आपने खुद कहा कि मुझे गुरु बहुत अच्छे मिले जिसकी वजह से आप इस मुकाम तक पहुंच पाए। चूंकि आप एक प्रोफेसर हैं, बच्चों से आपका सामना रोज रहता है, तो आपके सामने जो आपके स्टूडेंट हैं उनके साथ कैसी ट्यूनिंग है, मैं इस सवाल का जवाब आपसे जरूर लूंगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। लिसनर्स, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। और प्रोग्राम में आपका अपना वही बिंदास, सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें होती हैं, मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10। जब अच्छा लगता है सुनकर, ये पता चलता है कि हमारे जो टीचर हैं वो भी मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत सारे उनके पास

0: तो तब मैंने सोचा था रेगुलर करूंगी, तो जब वो ज्वाइन करी तो उसमें भगवान की दया से 100 में से सिर्फ एक ही नंबर कम था। तो जब वो ज्वाइन किया और वहां पर ऐसे हुआ तो यूनिवर्सिटी से कॉल आ गई, तो तब लेक्चरर अपॉइंट हुआ करते थे जमाना पहले, तब प्रोफेसर्स और इतना एडवांस स्टेट नहीं था। तो वहां पर शुरू किया अपना करियर, तो वहां पर करते करते फैशन शोज में जाना शुरू किया एज अ फैकल्टी। वहां पर जबरदस्त शूटिंग होती थी, तो लगता था शायद बच्चे वैसे ही शोर मचाते हैं। तो करते करते करते करते मुलाकात होने लगी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया कि आप मॉडलिंग करो, आप यहाँ आओ, आप हमारे एक एक दो दो दिन के वो जो शूट्स होते हैं उनमें आके आप वो करो, सिर्फ अपना यू नो पिक्चर्स शेयर कर दो या फिर आप एक छोटा सा एक्ट कर दो। तो फिर एक सीरियल भी मुझे मिला इंदिरा का।
1: Nice.
0: तो लेकिन वो मैं कर नहीं पाई उस टाइम पे भी, क्योंकि शायद भगवान को मेरे लिए टीचिंग ही बढ़िया लगी।
1: Nice.
0: उसके बाद करते करते फैशन शोज करे, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी मिली जब मैं मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड में सिलेक्ट हो गई, मिसेज इंडिया इंटरनेशनल में सिलेक्ट हो गई, मिसेज यूनिवर्स में सिलेक्ट हो गई, फिर फाइनली जो मैंने किया वो मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन था, क्योंकि सबकी डेट्स एक साथ में थी।
1: किसी एक का चुनाव करना था, राइट?
0: तो वो किया, उसमें टॉप 10 में थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन पल थे, और उसके थ्रू बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा,
1: एक्सपोजर मिला।
0: और उसके बाद अब फिर उसके बाद 3 किताबें अपनी मैंने लॉन्च की, और पढ़ते पढ़ाते करते कराते बहुत अच्छा संगम रहा नई नई चीजों का और पढ़ाई का।
1: अच्छा डॉक्टर प्रिया, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि हमारा जो कोर्स है, हमारा जो स्कूल है, ग्लैमर इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, मॉडलिंग की दुनिया में जाते हैं, कोई एंकर बनता है, कोई आरजे बनता है, चूंकि आप ब्यूटी क्वीन रह चुकी हैं और आपने इसमें पार्टिसिपेशन अपना दिया है, तो किन किन चीजों से लोगों को गुजरना पड़ता है, किस तरीके से अपने ऊपर काम करना पड़ता है, और वो आप हमारे लिसनर्स को बताइए ना प्लीज।
0: ऐसा होता है गगन जी, जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो ये इंडस्ट्री बड़ी फैसिनेटिंग होती है, बड़ी इल्यूजनरी होती है, हमें लगता है कि हम यहाँ आकर पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन जब हम इंडस्ट्री में एक्चुअल में जाते हैं तो देखते हैं कि जिंदगी कुछ और है।
1: राइट राइट।
0: लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि जहाँ चाह वहाँ रहा, तो तू जो चाहे अगर तेरे कदमों में हो शिखर, तो खुद पर यकीन कर।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
0: तो अगर आपकी अगर आपके अरमानों में, चाहत में इतनी शिद्दत है, तो आप आरजे हो या आप कोई एक्टर हो, आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता।
1: बहुत खूबसूरत।
0: तो जिस एक्सटेंड तक आप मेहनत करेंगे जिस भी एस्पेक्ट में मीडिया की, तो ऑब्वियसली आपको उसमें
1: रिजल्ट मिलने
0: शुरू हो जाएंगे, और जब मिलना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपको इंटरेस्ट देंगी, आपको बढ़ाएंगी और आपको जिताएंगी।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। लिसनर्स, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहे कुछ भी करना चाहते हैं, चाह रखना बहुत जरूरी है, और जहां चाह होती है तो ईश्वर की दुआएं, शुभकामनाएं, बड़े बुजुर्गों का साथ, दोस्तों का प्यार, जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो निश्चित तौर पर उसका जो रिजल्ट आता है, परिणाम बहुत सुखद होते हैं, वो आपके फेवर में होते हैं। और अपने ऊपर तो काम तो करना ही पड़ेगा भाई, रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, जानना होगा, समझना होगा कि मुझे आरजे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना है तो किस तरीके से अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमारे साथ हो रही हैं, डॉक्टर प्रिया सचदेवा जुड़ी हुई हैं।
0: मैं यही कहना चाह रही थी कि जब मैंने मॉडलिंग एक्चुअली में की तो आप सोच भी नहीं सकते, आई वॉज टू फैट, आई वॉज हैविंग नियर अबाउट 75 kg ऑफ वेट, नो वन कैन थिंक ऑफ बींग अ मॉडल एट दैट स्टेज, बिकॉज आई जस्ट डिलीवर्ड माई फर्स्ट बेबी। पर उसके बाद भी इतनी मेहनत करके आई गॉट इन फर्स्ट 10, दैट वाज एन अचीवमेंट।
1: ओह एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
0: सो इन एवरी एस्पेक्ट इफ यू सी, इट वाज अ हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क व्हिच एक्चुअली पेज।
1: राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो लिसनर्स, मैं भी वही बात कह रहा था, इस बात का सार यही निकल कर आता है कि अपने ऊपर अगर आप वर्क करेंगे या अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुनुशादा 90.8 FM। प्रोग्राम है आपका अपना, वही बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ और मेरे साथ स्टूडियो में आज मेरे खास मेहमान हैं, गेस्ट हैं डॉक्टर प्रिया सचदेवा। तो डॉक्टर प्रिया सचदेवा एक बार फिर से आपका सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी।
0: मैम आपसे मेरी जो बातें हो रही थी कि जहां चाहा वहां रहा, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी लाइनें हैं। ये सच है कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, लोग आपका इम्तिहान लेते हैं और अगर आप एक दृढ़ निश्चय के साथ चलते हैं तो मैं समझता हूं कि दिक्कतें परेशानियां आती जरूर हैं लेकिन आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बुक्स के बारे में थोड़ा आप मुझे बताइए कि आपने जो बुक्स पब्लिश हुई हैं, आपकी तीन बुक्स जैसे कि आपने हमें बताया, न्यू मीडिया एडवर्टाइजिंग एंड अफेक्टिवनेस, तो क्या सोच के आपके दिमाग में ये टॉपिक आए कि मुझे ये लिखना है और क्या अभी आप कर रहे हैं बुक्स के रिगार्डिंग?
1: मैंने जब अपनी PhD कंप्लीट की तो वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए भी और मेरे पूरे ग्रुप के लिए, क्योंकि मैं ही थी जिसने बहुत कम समय में बहुत अच्छे नंबरों से उस चीज को हासिल किया। चैलेंज ये था कि उस टाइम अगेन थोड़ा सा फैमिली कॉन्स्ट्रेंट्स थे जिसकी वजह से एकदम से वापस जॉइनिंग बैक नहीं कर सकती थी, तो मैंने उस टाइम को भी यूटिलाइज किया इंस्टेड के मैं उस टाइम को ऐसे वेस्ट कर देती। मैंने उस दौरान 6 महीने में मैंने 3 किताबें लिखी और मैंने वो तीन
0: किताबें में 3 किताबें ओह माय गॉड, बहुत बड़ा टास्क और इतने आसानी से ये कैसे कर पाई? अनुभव की वजह से?
1: अनुभव भी और काफी मेहनत और चाह थी, फिर यही कहूंगी चाह बहुत थी कि ऑथरशिप हो अपनी हो। तो जब सबको देखा करती थी गुरुओं को कि उनकी किताबें छप रही हैं तो दिल करता था कि अपनी भी हो, तो जब अपना लिखना शुरू किया तो सारे वो लेटेस्ट चीजें जो आने वाले समय में बच्चों को फायदा देंगी। मीडिया एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसी एक लाइन है जिसके अंदर हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, तो बच्चों को ये समझने में बहुत आसानी होगी कि हर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एडवर्टाइजिंग की किताब लिखी थी तो उसमें मैंने जिक्र किया है कि आने वाले टाइम में ये जो एड्स हैं ये क्या उनके लिए लेकर आएंगी और किस तरह की हो जाएंगी वो,
0: मतलब समझाने क्या लेकर आएंगे, रोजगार की बात कर रहे हैं आप या नजरिया
1: की बात कर रहे हैं? जैसे 10 साल के बाद इसका नजरिया उनके लिए क्या होगा, तो जो पर्सपेक्टिव्स आज से 10 साल के बाद वो सोचेंगे वो मैंने कोशिश की है कि अपनी समझ से अपनी बुक में रखूं। अब जैसे हमारे जो ये बच्चे हैं ये मिलेनियल्स हैं तो अब इनके क्या शौक हैं, क्या ढंग हैं, ये गैजेट्स के साथ पैदा हुए हैं, गैजेट्स ही यूज करते हैं जबकि हमारी एजुकेशन बहुत डिफरेंट थी। तो आज आने वाले टाइम में ये जो नया मीडिया है ये उसको कैसे चेंज कर देगा और उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे, क्या थ्रेट्स होंगे और किस आसानी से वो अडॉप्शन कर पाएंगे उन चीजों का, ये सब मैंने अपनी किताबों में।
0: बहुत खूबसूरत, जितना मैं आपसे बात कर पाया हूँ और जितना मैं समझ पाया हूँ तो ऐसा लग रहा है कि इस पे एक डिबेट हो सकती है या इस पे एक और चर्चा हो सकती है आपके साथ। वाकई रियली नाइस टॉक टू यू डॉक्टर। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि फिटनेस के बारे में आप मुझे बता रहे थे और मैं ये जानना भी बहुत जरूरी है मेरे लिए कि किस तरीके से एक बंदा अपने आप को फिट रख सकता है, किस तरीके से वो अपने आप को आगे लेकर जा सकता है और आपका फिटनेस का जो राज है वो देख के लगता नहीं कि बस आप मुझे यही बता ही दीजिए कि फिटनेस का राज क्या है।
1: मैं तो यही कहूंगी गगन जी कि फिटनेस के लिए सबसे पहले आपका पॉजिटिव माइंड होना बहुत जरूरी है और दूसरा आपको अपने आप को ये समझाना बहुत जरूरी है कि जब आप व्यायाम करते हैं रोज करते हैं तभी भी कई लोग होते हैं जो अपना वजन कम नहीं कर पाते, उनको 10 तरह की बीमारियां होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका फोकस एक चीज के ऊपर होता है। आपको अपनी मेंटल स्पिरिचुअल इमोशनल हेल्थ सब चीजें एक साथ में देखनी होती हैं। तो अगर आप अपने डाइट कंट्रोल्स कर रहे हैं तो उसके साथ एक्सरसाइजेस भी जरूरी हैं, एक्सरसाइज के साथ वर्क लाइफ बैलेंस भी जरूरी है। तो अगर आप पर्सनल बैलेंस नहीं लेके चल रहे हैं, सिर्फ वर्कहोलिक हो तब भी दिक्कत है क्योंकि भगवान ने ये जो सृष्टि रची है ये सब बैलेंस के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप अपने सारे एस्पेक्ट्स को, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव सारे एस्पेक्ट्स को अगर आप बैलेंस करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइजेस और आप अपने जिमिंग्स पे, अपना वर्क लाइफ बैलेंस पे ध्यान देंगे तो ऑफकोर्स आप मुझसे भी बेटर फिट होंगे।
0: बहुत खूबसूरत, यानी कि लिसनर्स कहने का मतलब यही है कि इस बात का अगर हम सार निकालें तो संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, ताल तालमेल बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो पढ़ने पढ़ाने की बात हो, खेलने की बात हो, फिटनेस की बात हो। अति अगर किसी चीज की हो जाती है वो कहीं ना कहीं हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है हमारी सेहत के लिए। फिलहाल एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपको मिलेंगे यहीं, आप कहीं जाएगा मत। बहुत ही खूबसूरत गाना है कुड़ी मैनू कहंदी, हार्डी संधू की आवाज में ये गाना हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 FM, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ मेरे साथ स्टूडियो में आज खास मेहमान हैं, जो कि मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन 2014 में आपने पार्टिसिपेट किया, टॉप 10 तक आप पहुंची, डॉक्टर प्रिया सचदेवा। सो डॉक्टर प्रिया सचदेवा, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: आपकी बातों में मुझे एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि इंसान को जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। अगर आपने कोई कॉम्पिटिशन जीत भी लिया है और आपके जो जज्बात हैं वो काबू में हैं, बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज कहते ना कि छोटी सी ख्वाहिशें अगर इंसान की पूरी हो जाती है तो वो फैल जाता है, आम भाषा में अगर हम इस बात को ऐसे रखें। तो साथ ही साथ आपने ये भी हमें रखा कि डिस्कस किया कि गुरु और शिष्य का जो तालमेल है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि, और 19 साल का लगभग आपका एक्सपीरियंस है एकेडमिक का, तो ये जो तालमेल है आपको लगता है कि पहले जैसा रहा है या कुछ और बदलेगा? कहीं ना कहीं हम सम्मान में देखते हैं कि टीचर की बात स्टूडेंट्स नहीं सुनते, स्टूडेंट्स के साथ टीचर की कोऑर्डिनेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाता हुआ नजर आता है। पहले के समय को अगर हम देखें तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी कि ऐसा लगता था कि मतलब कुछ कह नहीं सकते कि गुरु के चरणों में हम लौट जाया करते थे, गुरु ने जो कह दिया उस बात को मतलब सचितार्थ है। तो आपको क्या लगता है कि कितना समय बदल चुका है और क्या बदलेगा?
1: मुझे लगता है चाहे वो बच्चे हैं या चाहे बड़े हैं, हर इंसान में कुछ नायाब होता है सीखने के लिए। अगर जैसे हम गुरु हैं लेकिन कुछ चीजें हम भी बच्चों से सीखते हैं, तो बच्चों के साथ जब हम तालमेल बिठाते हैं, मुझे बाकियों का तो नहीं पता बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो मैं यही कहूँगी कि मैं बच्चों को समझने की पूरी कोशिश करती हूँ, और बच्चों ने भी काफी हद तक इतने सालों में बहुत बच्चे पढ़ाए, बहुत बच्चों को गाइड किया, उनकी मेंटर भी रही, उनकी उनको गाइड भी करती रही। तो मैंने यही देखा कि अगर आप बच्चों के एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करें तो चीजें काफी सिंपल हो जाती हैं। इंस्टेड के अगर हम इम्पोज करें उनको कि ये चीजें होनी चाहिए, तो वो चीजें आज के टाइम में नहीं चल पाती, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत अवेयर हैं, बच्चे बहुत समझदार हैं, बच्चे बहुत प्रोग्रेसिव हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आप जिस फील्ड में उनको चाह रहे हैं वो उसी में ही राइज करें, उनके जो कैपेबिलिटीज हैं उनको पॉलिश करना एक टीचर का मैं तो कहूंगी धर्म होता है, कि उनको समझना, उनकी काबिलियत को समझना और किस एस्पेक्ट में वो काबिल हैं, उनको पॉलिश करना एक मेंटर की सबसे बड़ी खूबी होती है।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आपने इस सवाल का जवाब दिया जो मैं आपसे जानना चाह रहा था। कि फिर भी हम यही कहेंगे कि लिसनर्स, तालमेल होना बहुत जरूरी है। ट्यूनिंग अगर आपकी जबरदस्त है आपके टीचर के साथ, टीचर के आपके साथ, तो निश्चित तौर पर जो आपके काम है वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। मसलन चाहे वो नंबर की बात हो, प्रोजेक्ट्स की बात हो, कुछ भी कोई बात क्यों ना हो, कभी कभी टीचर ऐसे भी मिल जाते हैं कि पर्सनल लाइफ के सजेशन भी आप उनसे मांग रहे होते हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैडम प्लीज आप मुझे गाइड करिए।
1: मुझे तो ऐसा लगता है गगन जी कि शायद बच्चों के साथ आपकी जिंदगी जुड़ जाती है, क्योंकि आप उनके साथ माने ना माने कहीं ना कहीं उनकी कुछ सीखें जो उन्होंने इम्बाइब करी या आपने उनसे ली, वो आपके साथ कहीं ना कहीं जिंदगी भर चलती है।
0: बेशक बेशक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जब हम ना समझ होते हैं तो उस वक्त हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन जब हमें समझ आती है तो हमें वो टीचर याद आते हैं, हमें वो टीचर वाले जो दोस्त हैं वो याद आते हैं कि यार सर या मैडम हमें बहुत अच्छी वो गाइडेंस दिया करती थी, हमें बताया करती थी कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा। तो खैर डॉक्टर प्रिया सचदेवा, आप हमारे स्टूडियो आई, आपने बहुत सारी बातें पर्सनल लाइफ के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, कॉलेजेस के बारे में आपने हमारे श्रोताओं को बताया। इस बात के लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जाते जाते मैं एक छोटा सा संदेश आपसे जानना चाहूंगा, ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि तू जो चाहे अगर तेरे कदमों में हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर।
0: यकीन कर, यकीन कर, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। कहते हैं ना कि खुद पर और खुदा पर भरोसा है तो निश्चित तौर पर आपको मंजिल मिलेगी जरूर। और जिस तरीके से मैडम ने जो बात कही, एक अनुभव के आधार पर ये बातें आपके सामने रखी हैं, आप कोशिश करते जाइए, प्रयास करते जाइए और निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। तो डॉक्टर प्रिया सचदेवा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी।
0: सो लिसनर्स, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। टाटा बाय एंड टेक केयर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
4: राम राम, 2000 सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुरुषारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:01 हो चुके, 7 तारीख है, बोले तो बुधवार का दिन। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।
5: हैव अ नाइस डे, अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।

फुटफॉल ज़्यादा होगी, कुछ वीआईपी मोमेंट्स होंगे, और वीआईपी मोमेंट की वजह से मुझे लगता है कि ट्रैफिक की स्थिति भी कुछ ज़्यादा रहने वाली है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि गेट नंबर 4, गेट नंबर 3 शारदा अस्पताल के सामने जब ट्रैफिक की स्थिति बिगड़ती नज़र आती है तो एम्बुलेंस भी कहीं ना कहीं फंसती हुई नज़र आती है। बस सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब आप अपनी लेन में चल रहे हैं, गलत दिशा में गाड़ी ना चलाएं, गलत तरीके से गाड़ी को ओवरटेक ना करें ताकि आपकी वजह से किसी और को दिक्कत परेशानी ना हो। तो फंक्शन का लुत्फ उठाएगा, अपना आई कार्ड कैरी कर आइएगा और रंग में भंग ना पड़े इस बात का ख्याल रखने के लिए सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहेगी। फिलहाल मौसम का जो मिजाज है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आज है 7 अक्टूबर और उसके साथ ही साथ आज क्या अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो बात निकल कर ही सामने आ रही है कि आज का जो तापमान है मैक्सिमम 33 सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का ये अनुमान है, संभावना है, और ह्यूमिडिटी आर्द्रता यानी कि 85%, AQI 187 है जो कि पुअर अर्थात खराब श्रेणी में आता है, और सांस के मरीजों को बाहर निकलने अर्थात समय रहते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस बार आएंगे तो हम बात करेंगे ट्रैफिक अपडेट के बारे में, वीआईपी मूवमेंट के बारे में, और एक घटना घटी है वक्त रहते हुए सारे यात्री सुरक्षित निकल गए उस स्लीपर बस से, उसके बारे में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ, 9:11, 7 तारीख, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गगन आपके साथ, ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल योर शारदा 90.8 FM।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
5: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
6: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
5: ये सब बाद में,

0: ले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
1: हाँ माँ जी।
2: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
5: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
6: गगन खोखरी फतेह।

0: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगी?
1: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
0: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
1: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
0: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
2: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। 9:20, 7 तारीख, गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ। बुधवार का दिन। हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, इस गाने का जिक्र मैंने क्यों किया या उस गाने से मैंने लाइनें यहां क्यों आपके सामने रखी? कहने का आशय है कि जब जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे होते तो निश्चित तौर पर आपकी एक मंजिल होती है और उस मंजिल को सामने रखते हुए दिक्कतें परेशानियों को झेलते हुए फाइनली एक दिन आप उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उस सफर को जब आप याद करते हैं तो कहते हैं कि सुहाना सफर रहा। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। जन सेवा के दौरान उन्होंने आज 25 साल पूरे कर लिए तो सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लख लख बधाइयां, बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिल्ली के सरोजनी नगर में एक विनायक मंदिर में उन्होंने सुबह सुबह पूजा अर्चना की और उसके बाद जो उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बात कही वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले जापान के प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी जी को बधाई दी है। मोदी जी एक्स पर कहते हैं कि आज नई दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, उन्होंने नहीं मतलब सिर्फ लिखा है कि पूजा अर्चना की और भगवान श्री गणेश से देश भर के अपने परिवारों जनों की सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। ये बहुत जरूरी है कि सब खुशी रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो और देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे, ऐसी हमारी कामना है। और ईश्वर इस कामना को पूर्ण करें। और दिक्कतें परेशानियां आ जरूर रही हैं लेकिन हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस आगे बढ़ते चले जाना है देश हित में। और क्या है खास जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद टर्न को एनी वेयर इंस्टीट्यूट जो गाने थे माशाल्लाह क्या गाने थे। फिलहाल ये गाना सिर्फ आपके लिए सुर शारदा 90.8 FM पर। कान में ईयरफोन लगाकर अगर आप सुन रहे हैं तो अगल बगल की ध्वनि भी सुन पाए, इतनी ध्वनि रखेगा ईयरफोन की। और गाड़ी में चला रहे हैं FM तो ध्वनि उतनी रखेगा ताकि आपकी वजह से किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। दिलजीत दोसांझ की आवाज, दिलजीत जब गाते हैं तो दिल को जीत ही लेते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ और सिर्फ सुर शारदा 90.8 FM पर।

0: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
1: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
0: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

सोना सोना यार मेरा सोना सोना। 9:29 बुधवार का दिन, गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। आज पूरा भारतवर्ष भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल यानी कि 25 वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव मना रहा है और अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे देश भर में। और भारत संकल्प सभा के माध्यम से एक नई शुरुआत की जा रही है और सेवा ज्योति कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है। वडोदरा में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी की जा रही है कि वहां पर एक बहुत बड़ा गरबा का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है जिसमें कि 60,000 से भी ज्यादा यूथ उसमें एक साथ शिरकत करेंगे और नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है। और 25 साल के निरंतर और अटूट नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लख लख बधाई, बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो खुश रहें, स्वस्थ रहें और देश हमारा यूं ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। चलिए, दिल्ली एनसीआर का जब मैं जिक्र करता हूं तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के बारे में बातें होती हैं, ट्रैफिक के बारे में बातें होती हैं। अब सुनने में आ रहा है कि दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, उस पर शिकंजा कसने के लिए इंडस्ट्री के फ्यूल स्टोरेज और चार्जिंग पॉइंट पर कैमरे नजर रखेंगे। इसके बारे में अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि ये अपडेट है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर पैन टिल्ट जूम यानी कि PTZ कैमरा लगाने का एक ऑर्डर दिया है और 31 अक्टूबर 2026 तक ये आदेश का पालन करना होगा, लगाने होंगे कैमरे। और इस तरीके से कहीं ना कहीं किसी हद तक हम शायद अपने प्रदूषण पर कंट्रोल कर पाए। उसके लिए जरूरी है कि एक पौधा अपने माँ के नाम जरूर लगाइए, पेड़ों का ख्याल रखिए, पौधों का ख्याल रखिए और हरियाली का ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे चेहरे पर भी मुस्कान बनी रहेगी। अदरवाइज दिक्कतें परेशानियां जो है दिल्ली एनसीआर में शायद कम ना हो, हाँ लेकिन दिल्ली एनसीआर में उम्र जरूर कम हो जाएगी। क्या कह दिया, समथिंग इज वेंट रॉन्ग? नहीं नहीं, सही गया, सही किया आपने। गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन सुरशादा 90.8 FM। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। कहीं ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। समवन इज वेटिंग फॉर यू। गुड मॉर्निंग।

0: ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल खुशामदीद खैर मकदम में हूं गगन आपके साथ।
1: खवातीनो हजरात,
0: हाँ नुक्ता लगाया,
1: हाँ जबर लगाया यानी कि सबका स्वागत है, महिला पुरुष बच्चे लोग सबका स्वागत है,
0: सही था ना?
1: परफेक्ट। जब भी मैं बोलता हूँ बेटा ध्यान से सुना करो तुम। और नुक्ता लगाया करो जहाँ लगाना है।
0: हाँ चलिए, नुक्ते से निकलकर आगे आते हैं और कभी कभी हम देखते हैं कि नुक्ता चीनी लोग निकालते रहते हैं।
1: शाबाश, गुड जॉब, कितनी छोटी छोटी बातों को पकड़ने लगा।
0: चलिए, कभी किसी की जिंदगी में टांग मत अड़ाइए, नुक्ता चीनी मत करिए, वरना दिक्कतें परेशानी आपके साथ भी हो सकती हैं। फिलहाल जब कोई आगे बढ़ रहा होता है तो निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए, और सफर सुहाना सफर होता ही होता है। थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानी आती है, लेकिन जब आप अपनी मंजिल के करीब होते हैं तो निश्चित तौर पर एक सेवा संकल्प अभियान के रूप में प्रोग्राम आयोजित होते हैं। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। आज वो अपनी राजनीति में सेवाकाल में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, तो इस बात के लिए लख बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो हेल्दी रहें और देश के प्रगति में अपना निरंतर योगदान वो देते रहें, ये तो रही एक बात। दूसरी बात ये कि ट्रैफिक की अपडेट भी कुछ हमारे सामने आ रही है। वीआईपी मूवमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर दौरे के चलते सुरक्षा प्रबंधों की वजह से नोएडा ग्रेटर नोएडा के कई हिस्सों में ट्रैफिक कुछ समय के लिए बाधित रहा, इसकी बात मैंने आपको बता दी। और दूसरी बात ये कि एक घटना घटी यानी कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 148 के पास एसी स्लीपर बस में एक आग लगी, लेकिन थैंक गॉड कोई हताहत नहीं हुआ। 32 यात्री जो पैसेंजर्स थे सुरक्षित अच्छी तरीके से बाहर निकाल दिए गए। कुल मिलाकर यही कि इस तरीके की घटनाओं से हमें अपने आप को बचा कर रखना होगा और गाड़ी का मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना होगा ताकि कोई इस तरीके की घटनाएं भविष्य में ना घटें, जन धन हानि ना हो। आपकी जान बेशकीमती है, अपनी जान का ख्याल रखें।
1: ये प्रेमी की बात हो रही है?
0: देखिए, इसमें दोनों बातें, जब हम अपनी जान से प्यार करते हैं तो निश्चित तौर पर हम उस जान का भी ख्याल रखने की बात करते हैं, क्योंकि आप अपनी जान के साथ कुछ गलत होने नहीं दोगे।
1: अजी लगता है ट्यूशन लेना पड़ेगा, मैं तो सर चकरा गया। कितनी अच्छी बात की, मतलब खुद का भी ख्याल रखो और अपनी जिनसे तुम मोहब्बत करते हो खुद ब खुद उनका भी ख्याल हो जाएगा, एक कवि ये कहता है।
0: हाँ गगन यही कहता है। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गगन आपके साथ, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग सुप्रभात।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: ऑडियो क्रेडिट्स परफॉर्म्ड बाय बंजारे एंड सिमरन कौर, रिटन बाय बंजारे एंड सिमरन कौर, कंपोज्ड बाय बंजारे, म्यूजिक प्रोडक्शन बाय रॉनी। सो लेट्स एंजॉय इट ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुरशाता 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। इस स्टूडियो की घड़ी में 9:45 हो चुके हैं। 7 तारीख है यानी कि वेडनेसडे का दिन। क्या है खास आसपास उसके बारे में बात कर लेते हैं। खास बात यह कि दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के चलते कुछ जो घटक हैं, जो संयुक्त दल हैं, वो कुछ अपनी बात रख रहे हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जंतर मंतर और आकाशवाणी जो भवन है उसके आसपास सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। तो कहने का आशय सिर्फ हमारा ये कि अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो ट्रैफिक की अपडेट के साथ आप जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी न हो, है ना। ये एक बात। दूसरी बात ये कि दिल्ली में सुनने में आया कि रात 10:23 पर दिल्ली NCR के कुछ क्षेत्रों में 4.9 तीव्रता के साथ भूकंप महसूस किया गया और ये उत्तराखंड का चमोली इसका केंद्र रहा। सोचिए, थैंक गॉड कोई जनधन हानि ना हो, ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं। और DU में अगर आप रोजगार मेला में जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिल जाए, तो DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, हिंदी में बोले तो दिल्ली विश्वविद्यालय का केंद्रीय प्लेसमेंट सेल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए अवसर 2026 जॉब फेयर का दूसरा जो संस्करण है वो आयोजित वहाँ हो रहा है और जिसमें 85+ कंपनियां इसमें शिरकत कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि यूथ को जेन जी को वहां जाना चाहिए। हाँ ठीक है बेटा, मैं करेक्ट करता रहता हूँ। हाँ, तो ये कुछ खास अपडेट थी। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल सो शारदा 90.8 एफएम। लेकिन सुरक्षित चलेगा, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचेगा। और शारदा विश्वविद्यालय के सामने यानी गेट नंबर 3 के सामने, शारदा अस्पताल के सामने ट्रैफिक थोड़ा बाधित हो जाता है, बस एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए यानी कि आपको भी रास्ता मिले लेकिन सुरक्षित चलेगा, ओवरटेक ना करेगा और जाम की स्थिति से अपने आप को बचाएगा।

0: जब सॉन्ग्स अच्छे होते हैं तो बार बार उसी फिल्म के गाने सुनने का मन करता है। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। 9:53, 7 तारीख यानी कि बुधवार का दिन, एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, तमाम बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। और सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हम यहां से ऑन एयर होते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। आपको कैसा लगता है 0120406025 अर्थात 40 60 205, एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर देते हैं, दोहरा देते हैं 40 60 205, और उससे पहले 120 शेयर का एसटीडी कोड लगाना ना भूलेगा। मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं तो मेल है ना 90.8fm@sharda.ac.in के जरिए आप हमें मेल कर सकते हैं। और इसके अलावा शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप सबके लिए खुले हुए हैं। ऐसे दरवाजे खुलने जा रहे हैं यानी कि नवरात्रों का बड़ी बेसब्री से हम इंतजार करते हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि एक त्योहार जाता है तो दूसरे त्योहार का हम स्वागत कर रहे होते हैं। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और उसके बाद नवरात्रि, फिर और त्योहार है ना। नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि के दौरान, उससे पहले मैं एक डायलॉग आपके सामने रखना चाहूंगा तो फिर आप कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे होली जब आती है तो अमजद खान साहब कहते हैं
1: कब है होली।
0: लेकिन आप यहां पूछ सकते हैं कि यहां अष्टमी और नवमी कब है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 18 यानी कि 18 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी है, तो इसके बारे में आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। और बस यही कहूँगा कि त्यौहार अच्छी तरीके से मनाएगा, अपना ख्याल रखेगा और माता रानी से प्रार्थना करेगा कि सबका भला हो। जब आप सबके भले के बारे में सोचते हैं तो निश्चित तौर पर आपका भला होना लाजमी है। आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय, मैं हूं गगन गौतम।
2: By Banjare and Simran Kaur, written by Banjare and Simran Kaur, composed by Banjare, music production by Ronnie. So let's enjoy it. All your Suno Sharda 90.8 FM.
3: क्या बात है इस beautiful track के साथ मैं ले रहा हूँ अनुमति। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए, कल होगी फिर आपसे मुलाकात। Till then, bye bye, take care, keep listening Suno Sharda 90.8 FM और मेरे साथ होते हैं बहादुर।
1: हाँ, गगन बहादुर को नमस्कार।
3: मतलब
1: दोनों की तरफ से नमस्कार। कल होगी मुलाकात। चल रहे बाबा, टेक केयर, नमस्कार।

0: चारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद जाना पहचाना प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई। अरे भाई वाह, आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर से आवाज, सभी लोग ध्यान दें, आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर। अरे ये HPV क्या होता है भाई और इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे सियातिया सिंह जी इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइए ये सब क्या चल रहा है?
1: अरे आरजे बाबू परेशान मत होइए, आज बहुत अच्छा और बड़ा दिन है गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ
0: जी।
1: गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी की 12 साल की बेटी थी गुड़िया, पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो जाए। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की। रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की? लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा लिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए, उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। बस उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी की जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम पीछे क्यों रहें? अगले दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन 2 दिन में सब कुछ ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और लोग भी प्रेरित हुए भैया ऐसे। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगे। कुछ महीनों बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ दिखने लगा। ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी, लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बातें हैं, लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ

0: सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
1: तो सिहतिया भैया, इसका मतलब तो सीधे सीधे ये हुआ कि ये जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
0: हाँ, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं आरजे बाबू?
1: वो क्या है सिहतिया भैया, अब तो आप थोड़ा डरा भी रहे हैं सबको।
0: मैं डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण ही नहीं होता। ना कोई दर्द, ना कोई बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है।
1: मतलब आपका ये है कि इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसके अंदर हो क्या रहा है।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
1: ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो फिर इससे बचने का कोई ना कोई तरीका तो होगा या नहीं है?
0: यही तो अच्छी खबर है आरजे बाबू। जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
1: सच में? कैसे?
0: HPV वैक्सीन से एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
1: तो सिहतिया भैया, जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे जो गांव के भोले भाले लोग हैं उनकी समझ में भी आसानी से आ सके ये सब बातें।
0: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
1: अरे सिहतिया भैया, खेत के चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि कोई जंगली जानवर है या अन्य जानवर है खेतों में घुस करके फसल को खराब ना कर दे।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
1: ओहो, मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
0: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आ जाए, ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
1: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए? कोई खास उम्र होती है क्या इसके लगवाने की?
0: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आम तौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
1: लेकिन सिहतिया भैया, मान लीजिए अगर कोई इससे बड़ी उम्र की लड़की हो, उसके लिए क्या फिर करना चाहिए?
0: देखिए भाई, तो भी चिंता की बात नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर रहेगा।
1: बिल्कुल, ये सब बातें सिहतिया जी तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक बात और आ रही है कि ये जो टीका है वो लड़कियों का टीका है, यानी कि उनको लगवाया जाता है, तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
0: सवाल बहुत अच्छा आप कर रहे हैं भाई, यही तो सबसे अहम बात है आरजे बाबू। महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
1: तो सिहतिया भैया, जो आप बता रहे हैं इस बात को जरा विस्तार से बताइए।
0: चलिए विस्तार से बात करते हैं, यानी कि डिटेल में बात करते हैं। देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
1: बिल्कुल सही बातें कही हैं सिहतिया भैया आपने।
0: देखिए भाई, ये एक दूसरे से सीखते हुए हम बातें रख पा रहे हैं आपके सामने और एक रिसर्च के आधार पर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो बात सामने ये आती है कि अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा तो ध्यान नहीं दे पाएगा वो अपने परिवार पर, माँ बहन पर, बेटी पर, तो आधी लड़ाई वहीं वो हार जाएंगे। इसलिए पुरुषों की भी भागीदारी बहुत जरूरी है मेरे दोस्त।
1: तो सिहतिया भैया, आपके कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। पूरे जोश के साथ मैं इस बात को डिनाई करता हूँ, इनकार करता हूँ। ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
1: लेकिन सिहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि ये टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर वे माँ नहीं बन पाएंगी, माँ बनने में दिक्कत होगी।
0: देखिए आरजे बाबू, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आपने सुनी है ना, ये सच नहीं है।

0: बल्कि अफवाहें हैं, अफवाहें।
1: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं आपको एक एक करके साफ कर देता हूं। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि टीका लगने के बाद बस हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती।
1: अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है?
0: भाई वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का मां बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक वायरस से बचने के लिए होता है और कुछ नहीं।
1: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की फिर क्या जरूरत है?
0: देखिए, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही ये पहले से सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे बाबू, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सियातिया जी, एक बात और बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
0: हाँ हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं भाई, और आगे भी आ रहे हैं। लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंचे। जहां जानकारी नहीं पहुंचती, वहां ऐसी कुछ रानी जैसे केस हो जाता है। उसी इलाके के पास एक और गांव था, छोटा पुरवा। यहां रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हंसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहां भी आई और लोगों को समझाने लगे। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था। उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी मां से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास जब जवाब नहीं था, उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। ये सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब ये काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा लिया होता तो शायद आज ये दिन उन्हें देखना नहीं पड़ता। इलाज शुरू हुआ, लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर भरता खर्च, परिवार की चिंता और दर्द, रानी की बीमारी ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झकझोर दिया। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत कुछ बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में एक विनती, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते हुए।
1: सियतिया भैया, ये तो आपने बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाई रानी की, लेकिन जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उनको क्या करना चाहिए?
0: देखिए साहब, उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है उसे दूसरों तक पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाइए।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
0: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: छोटी सी तैयारी, बड़ी बीमारी से बचाव, बेटी का टीका, परिवार का भविष्य सुरक्षित, बचाव। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन जाने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM। फिलहाल के लिए नमस्कार। सुनो शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपके शहर ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और आज कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में हम बात करेंगे HPV वैक्सीनेशन की, इस अभियान की। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार श्रीवा जी, आप डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं, साथ ही साथ आप ACMO भी हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के। तो सर, सबसे पहले HPV को समझना चाहेंगे, ये क्या है?
2: ये एक वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, जो कि हमारा जो यूट्रस होता है उसके शुरुआत के हिस्से पे होती है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, इसलिए इसे सर्वाइकल कैंसर भी कहा जाता है।
1: अब बात आती है कि इसका जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वो कैसे फैलता है?
2: इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जो हमारे सिक्रीशंस होते हैं उनके संपर्क में आने से फैलता है।
1: जो HPV वैक्सीनेशन, वो क्या अभियान है?
2: देखिए, HPV वैक्सीन ये एक नया अभियान है जिसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान अजमेर से इसकी शुरुआत की गई थी।
1: अब जैसे आपने बताया कि राजस्थान के जिला अजमेर से इस अभियान की शुरुआत हो गई, तो HPV जो वैक्सीनेशन है वो किस तरह से अपने जिले में किया जा रहा है?
2: 45 जिले ऐसे थे जहां पे पहले से ही MR अभियान चालू था। हमारा जिला गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पर भी MR अभियान चल रहा था। उसके बाद अब हम इस अभियान को अपने यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। HPV वैक्सीनेशन की जो ट्रेनिंग्स हैं हमारे जिले में चालू हो चुकी हैं, जहाँ पर सभी ब्लॉक के चिकित्सा अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा वहाँ के अन्य कर्मी जिनका अहम रोल इस अभियान में होना है तथा जो हमारे बेसलाइन वर्कर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
1: तो ये तो बात रही कि क्या कुछ इस अभियान के अंतर्गत आप तैयारी कर रहे हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या इस अभियान के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है?
2: हाँ बिल्कुल, जागरूकता अभियान जो है हमारे सभी अर्बन PSC और CSCs के तहत जितने हमारे बेसलाइन कर्मचारी हैं, जैसे आशा, ANM, आंगनवाड़ी, इनके द्वारा चलाया जा रहा है। इनके द्वारा एक सर्वे भी किया जा रहा है, क्योंकि जो टारगेट पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 1% ऐसी बच्चियां जिनकी उम्र 14 वर्ष होगी, उसका सर्वे किया जा रहा है।
1: इस HPV वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए क्या कुछ रणनीति आपके द्वारा बनाई जा रही है?
2: देखिए, सबसे पहले तो हमें यही पता होना आवश्यक है कि हमारा टारगेट पॉपुलेशन कितनी हो रहेगी, कितनी उम्र के बच्चों को हम लगाएंगे, किस किस को हम लगाएंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है तथा किस किस को नहीं लगाया जाना है, ये हमें अपनी टीम को बताना बड़ा आवश्यक है तथा कहाँ कहाँ हमें टीकाकरण कराना है ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसी फैसिलिटीज को ट्रेनिंग दी जा रही है।
1: तो ये तो बात रही कि जो इस अभियान को सफल बनाने के लिए आपके द्वारा जो रणनीतियां तैयार की जा रही हैं उसके बारे में। अब बात आती है सर कि इस HPV वैक्सीनेशन में कौन सी वैक्सीन लगाई जाए।
2: देखिए, हमारे इस अभियान के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गार्डेसिल 4 वैक्सीन को चुना गया है, जिसके अंदर 4 क्वाड्रोवेलेंट होते हैं, 6, 11, 16 और 18। हमारे देश में यह देखा गया है कि 16 और 18 से ही इन्फेक्शन फैल रहा है, इसलिए इस वैक्सीन को चुना गया है। यह सिंगल डोज वैक्सीन है, वायल मिलेगी और एक ही डोज लगेगी। ये लाभार्थी के लेफ्ट ऊपरी हिस्से पर लगाई जाएगी और मसल्स के अंदर ये टीका लगेगा।
1: तो अपने जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो HPV जो वैक्सीनेशन है वो कहाँ कहाँ पर होगा?
2: देखिए, इसके लिए ऐसी संस्थाओं को चुनना है जहाँ पर 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं हों, डॉक्टर्स अवेलेबल हों। तो ऐसी हमारी 9 जगह हमने चुनी है। सबसे पहले हमने लिया है अपना जिला अस्पताल, उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिम्स और PGICH जहाँ पर 24 घंटे सेवाएं दी जाती हैं, तथा जो रूरल एरियाज हैं वहाँ हमारी 4 CHC हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उन्हें लिया है जहाँ पर 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं इस प्रकार से। और 2 हमारी अर्बन CHCs हैं, एक बादलपुर में और एक भंगेल में। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 9 जगह चुनी गई हैं जिन पर टीकाकरण चालू होगा।
1: सर, HPV वैक्सीनेशन अभियान में जो हमारी आशा बहनें या ANM आंगनबाड़ी इनका भी कुछ योगदान रहेगा?
2: हाँ बिल्कुल, देखिए इन लोगों के बिना तो हमारा कोई भी अभियान सफल हो ही नहीं सकता है। देखिए, एक टीम के साथ 4 सदस्य होंगे, एक पहला टीकाकर्मी, एक दूसरा जो बच्चियां आएंगी उनकी एज वेरीफाई करने के लिए, तथा एक कंसेंट को वेरीफाई करने के लिए एक वेरीफायर की आवश्यकता होगी, इसके अलावा एक मोबिलाइजर की और एक वॉलेंटियर। इसमें हमारी आशा बहन जी, आंगनवाड़ी, कुछ वॉलेंटियर्स, स्टाफ नर्स और हमारी ANM सभी का अहम योगदान रहेगा।
1: बिल्कुल सर, अब जिन लड़कियों का टीकाकरण किया जाएगा उन तक सूचना कैसे पहुंचाई जाएगी?
2: देखिए, जिस प्रकार से हमारा कोविड वैक्सीनेशन हुआ था, पहले रजिस्ट्रेशन करते थे तो UIN पोर्टल है, उस पर आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आप रजिस्टर कर देंगे तो उस पे डेट वगैरह सब आ जाएगी, आप उस नियत स्थान पर पहुंच करके टीका लगवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता या करना नहीं आता है तो भी हमारे 9 सेंटर्स में से जो भी उनके नज़दीक होगा वहां पर पहुंचकर अपना एज प्रूफ दिखाना होगा, और जिस बच्ची का 14वां बर्थडे मनाया जा चुका होगा लेकिन 15वां बर्थडे अभी उसने नहीं मनाया होगा, उसको देखते हुए उन्हें रजिस्टर कर लिया जाएगा और अपने माँ बाप के मोबाइल नंबर पर उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिससे कि हमें कंसेंट मिल सके कि वो अपनी बच्ची को ये HPV वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। और अगर मोबाइल नहीं होगा तो इसके लिए सरकार की तरफ से यह भी व्यवस्था रहेगी कि वो लिखित में भी अपना कंसेंट दे, लेकिन माँ या पिताजी को इस सेंटर पर आना होगा।
1: सर, कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो के माध्यम से आप हमारे जो सुनने वाले हैं, समुदाय के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: देखिए, रेडियो ये बहुत पुराना और बहुत अच्छा साधन है। रेडियो के द्वारा सभी तक बहुत ही आसानी से सारे हमारे जितने मैसेजेस हैं वो पहुँचते हैं, और HPV वैक्सीनेशन एक अहम वैक्सीनेशन होने वाला है, क्योंकि हेपेटो पेपिलोमा वायरस के द्वारा या सर्वाइकल कैंसर से लगभग 74,000 के करीब डेथ्स हो रही हैं और इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सभी 14 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण कराना आवश्यक है और सभी लगवाएं।
1: बिल्कुल सर, HPV वैक्सीनेशन के बारे में, इस अभियान के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी सर आपने आज सुनो शारदा रेडियो के माध्यम से हमारे जो सुनने वाले हैं, समुदाय के लोग हैं, उन तक पहुंचाई। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here।

0: अरे भैया रामू।
1: हाँ भैया श्यामू।
0: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
1: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
0: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
1: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
0: तो अभी चलो।
2: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
3: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
4: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया? नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
5: जी दीदी,
4: जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
6: और आसपास कहूं भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जा...

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब होटल मॉल स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम

0: जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करे और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज के समय में खेती भी आधुनिक होती जा रही है, ये आप जानते ही हैं, और आप किसान भाइयों के स्मार्ट विचार खेती में क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। दिन पर दिन बदलती उपभोक्ताओं की मांग और बाजार के बदलते स्वरूप ने आप किसान भाइयों को भी एक नए सिरे से खेती करने के लिए प्रेरित किया है। अब नई तकनीक और नई फसलों में आप किसान भाइयों की रुचि बढ़ रही है। इसी के साथ अब आप किसान भाई कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसलों की खेती कर रहे हैं। इन फसलों में मशरूम भी शामिल है। किसान मित्रों, मशरूम ने बाजार में बहुत ही कम समय में अपना स्थान कायम कर लिया है। वर्तमान समय में शहरों से लेकर गांव तक लोगों के बीच मशरूम काफी पसंदीदा सब्जी बनती जा रही है। बाजार के पहले की तुलना में बदलते स्वरूप को देख आप किसान भाई भी अब परंपरागत खेती छोड़कर नए सिरे से खेती करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। साथ ही आप किसान भाई ऐसी खेती कर कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं और आप किसान भाइयों के लिए मशरूम की खेती फायदे का सौदा बन रही है। मशरूम की खेती कर आप किसान भाई कम लागत में ज्यादा मुनाफा कर सकते हैं और मशरूम की खेती करने के लिए सरकार ट्रेनिंग के साथ बीज पर भी सब्सिडी देती है। पिछले कुछ समय से भारत में मशरूम की मांग बढ़ती जा रही है। मशरूम भले ही विदेशी सब्जी हो, लेकिन हम भारतीयों के बीच बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। यही कारण है कि बीते एक दशक से इसके उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। मशरूम जहां खाने का स्वाद बढ़ाती है, तो वहीं आप किसान भाइयों के लिए भी वरदान साबित हो रही है, क्योंकि जो किसान भाई मशरूम की खेती करते हैं उनकी आमदनी अच्छी होती है। तो किसान मित्रों, अभी तक आप मशरूम की खेती नहीं कर पा रहे हैं, वही परंपरागत खेती कर रहे हैं, तो आप मशरूम की खेती कीजिएगा और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें, मशरूम के बारे में बात करें, वहां से ट्रेनिंग लें और फिर मशरूम की खेती करके अधिक आमदनी करें। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही मशरूम की खेती की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और उनके साथी।

किसान मित्रों, आप गांव में रह के खेती बाड़ी करके और इसके साथ साथ पशु पालन करके अच्छी खासी कमाई कर अपनी जीविका चला सकते हैं। तो जरूर खेती के साथ साथ आप पशु पालन कीजिए, आपको बाहर से खाद नहीं खरीदना पड़ेगा और जो पशुओं का गोबर है बहुत ही अच्छी खाद होती है, जो उत्पाद मिलता है वो भी उच्च गुणवत्ता वाला मिलता है। और वैसे भी हम आपसे कहते ही हैं कि आप खेती के साथ साथ अन्य काम भी करें ताकि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सही रहे। और खेती में जो आपकी

गाँव में वो खेती के अलावा पशुपालन में लगकर घर में समृद्धि लाने में लगी रहती हैं। और जो भारतीय महिलाएं होती हैं उनमें बचत की प्रवृत्ति पाई जाती है, ये तो आप जानते ही हैं। और अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं कुछ ना कुछ करके घर को मजबूत करने में लगी रहती हैं। और गांव में पशुपालन के क्षेत्र में 70% महिलाएं लगी हुई हैं। सहभागिता को अपनाकर महिलाएं न केवल सशक्त हो रही हैं बल्कि देश के आर्थिक ढांचे को भी मजबूत कर रही हैं। आज के दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए डेयरी आय और रोजगार एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। बात दूध उत्पादन की करें तो लाखों भारतीय ग्रामीण परिवारों के लिए डेयरी एक सदियों पुरानी परंपरा है। दूध किसी भी अन्य कृषि वस्तु की तुलना में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान देता है। तो हमारे वो बहन भाई जो पशु पालन करके दूध उत्पादन करना चाहते हैं तो जरूर शुरू कर दें, क्योंकि आजकल तो गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध दूध की और इससे बने अन्य उत्पाद की बहुत मांग है बाजार में। तो बहुत ही अच्छा आय का स्रोत है। आप खेती के साथ साथ पशु पालन जरूर करें। पशुपालन से दो फायदे अक्सर हमें होते हैं कि एक तो हमारी खेती के लिए हमें खाद अच्छा मिल जाता है और दूसरा जो पशुओं से हमें दूध मिलता है और उसको बेच करके हम अपने घर की आर्थिक स्थिति अच्छी कर सकते हैं। तो पशुओं से हमें लाभ ही लाभ है। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही कि खेती के साथ साथ हम पशु पालन करके किस तरह से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं तरुण वाल्यान।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ये उपदेश और कलाकार थे तरुण बाल्यान। किसान मित्रों, भारत सरकार अपने देश में से बेरोजगारी मिटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और रोजगार के नए नए अवसर नागरिकों को प्रदान कर रही है, जिससे देश के सभी नागरिकों को रोजगार प्रदान हो सके और वो स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसीलिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत देश में जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं किंतु उनके पास नौकरी नहीं है और वो बेरोजगार हैं, तो सरकार ऐसे लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है और ये योजना युवाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। इसके अलावा देश के जितने भी नागरिक पढ़े लिखे हैं उन्हें सरकार द्वारा फ्री में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उनकी योग्यता और ट्रेड के अनुसार दी जाती है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के जितने भी राज्य हैं उन सभी जगह राज्य सरकार ट्रेनिंग सेंटर खोल रही है। और हमारे वो बहन भाई जिन्होंने 10वीं या 12वीं पास की हो, अपनी पढ़ाई बीच में ही वो छोड़ चुके हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। योजना के माध्यम से उनको 5 साल की ट्रेनिंग करवाई जाएगी और इन सभी प्रशिक्षण केंद्रों को सही ढंग से चलाने के लिए राज्य सरकार इन सभी केंद्रों का निरीक्षण भी करती रहती है, जिससे ये पता चल सके कि वहां पर जो प्रशिक्षण लेने वाले हैं उनका प्रशिक्षण है वो कैसा चल रहा है। और आवेदकों की ट्रेनिंग खत्म होने के पश्चात उन्हें 8,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और इस योजना में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद युवाओं को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और युवा अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो उनको रोजगार भी आसानी से मिल जाता है। तो जो भी हमारे युवा साथी हैं जिन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है किसी कारण से, तो वो कौशल विकास योजना के तहत अपनी पसंद का कोई भी क्षेत्र चुन सकते हैं और उसमें ट्रेनिंग लेने के बाद रोजगार हासिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करना है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की आधिकारिक वेबसाइट PMKVYOofficial.org, यहां पर आप जाकर के आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ ही किसान मित्रों, आपको बता दें कि कौशल विकास योजना के तहत आप मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ले सकते हैं और भी जो कृषि से जुड़े व्यवसाय हैं उनकी ट्रेनिंग भी आप कौशल विकास योजना के तहत प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान।

सुनील चौहान द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
2: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो, कौन?
1: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
2: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
1: जल्द मिलते हैं।
0: हेलो हेलो हेलो,
3: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
0: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आइए जानते हैं माहवारी अनियमितताओं के बारे में। अगर आप गर्भवती नहीं हैं और आपकी माहवारी 3 या उससे अधिक महीने तक नहीं आती है,
1: अचानक से आपका मासिक धर्म अनियमित हो गया है,
0: आपकी माहवारी 7 दिनों से अधिक समय तक चलती है,
1: आपको हर घंटे या 2 घंटे पर पैड या टैम्पॉन बदलने की जरूरत पड़ती है,
0: माहवारी के दौरान आप बहुत अधिक दर्द का सामना करती हैं,
1: आपका मासिक चक्र न्यूनतम 21 दिन और अधिकतम 35 दिनों से अलग है,
0: आप माहवारी के दौरान स्पॉटिंग का अनुभव करती हैं,
1: आप माहवारी के दौरान अन्य लक्षणों जैसे सामान्य रक्त स्त्राव या बुखार का अनुभव करती हैं,
0: तो आपको उपचार के लिए फौरन नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करना चाहिए।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: The School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है, तो फिर कहीं देर ना हो जाए। कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: रेडियो आपके लिए लेकर आया है एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है जो कि स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना तथा उन्हें सशक्त करना है ताकि वो इससे मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा सके। तो चलिए श्रोताओं, आज बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर और जानते हैं कि जब पिता के सुरक्षा देने वाले हाथ ही राक्षस बन जाए तो ऐसी स्थिति में एक बेटी क्या करे। ऐसी मनोस्थिति से गुजरती हुई एक बेटी की कहानी आइए आज सुनते हैं इस कार्यक्रम में।

0: राधा, अरे ओ राधा, जल्दी उठ। अरे कब से आवाज लगा रही हूँ तुझे। अभी तक तू रो रही है, क्या है ये सब?
1: माँ मैं रोऊं नहीं तो क्या करूँ, कब तक ये सब चलता रहेगा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है।
0: अब फिर से वही सब शुरू मत कर दे, चुप हो जा।
1: पर क्यों माँ, मैं क्यों चुप रहूँ? मेरे साथ जो हर रोज इस घर में हो रहा है, क्या वो तुम्हें दिखाई नहीं देता? हर रोज मेरी आबरू को पैरों तले रोंदा जाता है, और ये सब देखकर भी तुम चुपचाप सहती रहती हो और देखती रहती हो, कुछ नहीं कहती हो, क्यों माँ क्यों?
0: अब बस भी कर राधा, ये तमाशा मत कर, भगवान के लिए चुप हो जा। वैसे भी हम औरतों को ये सब सहना पड़ता है, इसमें इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है?
1: माँ ये सब तुम क्या कह रही हो, तुम रोज देखती हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं माँ, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी, पिताजी जो मेरे साथ कर रहे हैं वो मैं सबको बता कर ही रहूँगी, चाहे जो भी हो जाए।
0: अगर तूने ऐसा किया तो मेरा मरा मुंह देखेगी।
1: माँ मत करो ऐसा माँ।
0: अरे राधा, तुझे मैं तब से फोन कर रही हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठाती?
1: सीमा मैं क्या बताऊँ, प्लीज अभी मुझे जाने दे, मुझे कोई बात नहीं करनी है।
0: राधा कुछ तो बोल, अगर बोलेगी नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि हुआ क्या है?
1: नहीं कुछ नहीं, मुझे जाने दो प्लीज अभी।
0: नहीं तो पहले मुझे बता ना कि क्या हुआ है।
1: कहा ना कोई बात नहीं है, क्यों परेशान कर रही हो मुझे?
0: तुझे मेरी कसम राधा, तुझे मेरी कसम राधा, अगर तू सच में मुझसे प्यार करती है तो जल्दी बता दे कि रो क्यों रही है, आखिर हुआ क्या है?
1: देख सीमा, मैं ही कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, और अब मैं और नहीं सह सकती, रोज रोज के तमाशे से मैं परेशान हो गई हूँ। मेरे पिताजी हर रोज मेरे कमरे में आ जाते हैं और मुझे गलत तरीके से छूते हैं, मुझसे जबरदस्ती करते हैं, और उनकी वजह से मैं एक बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी हूँ। उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरा अबॉर्शन भी करवाया था। मैं अब ये नहीं सह सकती, मैं नहीं सह सकती।
0: राधा ये सब तू क्या कह रही है, एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, और अगर ये सब हो रहा है तो तूने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया, वो जरूर तेरी मदद करेंगे।
1: क्या खाक मदद करेंगे सीमा, जब माँ ही साथ नहीं दे रही है तो कोई और साथ क्यों देगा?
0: मतलब
1: मेरे घर में ये बात सबको पता है, लेकिन कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। ये सब कहकर चुप करवा देते हैं कि बाहर किसी को पता चला तो घर की बेइज्जती हो जाएगी। अब तू ही बता मैं क्या करूँ।
0: तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, हम पुलिस के पास जाकर मदद लेंगे।
1: पुलिस? नहीं नहीं नहीं, पुलिस नहीं सीमा, मेरे घर वालों को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे, पुलिस नहीं।
0: राधा कुछ नहीं होगा, तू चल, मैं हूँ ना, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और अगर तूने आज हिम्मत नहीं दिखाई तो कभी इस दलदल से नहीं निकल पाएगी।
1: शायद सीमा तुम ठीक कह रही हो, इस बार मैं कदम पीछे नहीं लूंगी, और ना ही अपने साथ हिंसा होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। आगे बढ़ के हमें अभी कदम उठाना होगा। मैं अभी नंबर डायल करती हूँ। हेलो पुलिस थाना,
0: आई एम प्राउड ऑफ यू राधा, मुझे तुम पर गर्व है, और तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारी दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ है।
1: थैंक यू सो मच सीमा, तुम नहीं होती तो मैं ये कदम कभी नहीं उठा पाती। थैंक यू सो मच।
0: इट्स ओके।

पिता और बेटी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन कभी कभार कुछ घटिया मानसिकता के लोग इस रिश्ते को तार तार कर देते हैं। और जब रिश्ते इस कदर भावनाओं पर आघात करना शुरू कर दें, तो आवश्यकता है कि आवाज उठाएं, आवाज उठाने की और कहने आवाज उठाएं और कहें हिंसा को नो। उम्मीद है श्रोताओं कि आज की ये कहानी बदलते समाज के बदलते रूप को दर्शाने में सफल हुई। यदि इस कार्यक्रम से जुड़े कोई भी विचार है या कोई भी सवाल है, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7018712909। आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा कुन्नू कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनुषादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: पाँच से नौ साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या है? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगे बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 8 की ध्वनि शाला में।
1: आज हम लोग एक ऐसे पाठ पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है ध्वनि, और इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। बच्चों, पता नहीं आपने सुना जरूर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। आज मेरे साथ एक बच्ची बैठी है जिसका नाम है रेणुका। रेणुका, आपने सुना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में?
2: हाँ जी, सुना है।
1: सुना है, और क्या सुना है? उनका कुछ और भी पढ़ा है, इसके पहले भी कुछ पढ़ा है?
2: हाँ जी, उन्होंने सरस्वती वंदना लिखी है।
1: कौन सी सरस्वती वंदना?
2: वीणा
1: वरदे वीणा वादिनी वरदे। अच्छा, ये स्कूल में आज भी गाया जाता है, है ना?
2: हाँ जी, गाया जाता है,
1: खूब गाया जाता है। तो वरदे वीणा वादिनी वरदे आप लोग सुनते रहे होंगे, सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती वंदना के रूप में इसको बाकायदा आप गाते भी रहे होंगे। लेकिन नहीं याद होगा कि ये निराला जी की लिखी हुई है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बस इतना ही जान लो कि एक छायावाद इसको काल का नाम बोला जाता है, युग है जिसमें चार बड़े मशहूर कवि हुए हैं, उस युग के कवि हैं। उनमें पहला नाम अगर मैं लूं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये चार महत्वपूर्ण कवि उसमें गिने जाते हैं। और भी लोग हैं, लेकिन इन चार को स्तंभ कवि कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ऋतुएं बहुत प्रिय थी, बहुत से ऋतुओं पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उन्होंने वसंत पर भी लिखी है, उन्होंने वर्षा ऋतु पर भी बहुत सी लिखी है। वर्षा पर तो वो नाम ही लेते हैं, बादल राग। बादल राग इंटरनेट से खोज के पढ़ लीजिएगा, बादल राग। वर्षा पर उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, एक नहीं बहुत सी, और उन बहुत सी कविताओं में जिक्र आता है बादल राग का ज्यादा, लेकिन वसंत ऋतु भी उन्हें उतना ही प्रिय है। ध्वनि कविता वसंत ऋतु से संबंधित है, तो ऋतुओं को बहुत पसंद करते थे और ऋतुओं पर कविताएं लिखते थे, तो इसको ऋतु वंदना भी कह सकते हो, जैसे सरस्वती वंदना वैसे ऋतु वंदना। NCERT ने इस पर एक कार्यक्रम पहले बनाया हुआ है जिसका नाम है ध्वनि और काव्य मंजरी नाम से, तो उसका एक अंश जो गाया है वह भी आप सुन लीजिएगा।

0: और उसको सुनने के बाद हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं थोड़ी सी कविता को पढ़ने के ढंग पर चर्चा करती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि कविता जब तक हम लोग ठीक से पढ़े नहीं तब तक हम उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। तो उसको पढ़ करके देखते हैं। और जब मैं पढ़ूं तो रेणुका यह मत सोचना कि यही सबसे आदर्श है, इससे अलग भी तरीके हो सकते हैं और वह भी उतना ही अच्छे ढंग से कन्वे हो रहा होगा, उतनी अच्छे ढंग से अर्थ हम शायद संप्रेषित कर पा रहे होंगे। जैसे मैं एक बार कोशिश करती हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता को पढ़ते ही आपके मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है?
1: कि कवि जी ने ऐसा क्यों कहा कि अभी ना होगा उनका अंत,
0: अभी नहीं अंत होगा, क्यों कहा है? आपको क्या लगता है, आप अपने बारे में सोचते हो तो क्या लगता है कि आपका अभी अंत नहीं होगा तो क्यों नहीं अंत होगा?
1: क्योंकि जिस इंसान के अंदर कुछ करने की इच्छा हो, नया जोश या उमंग हो, उसका अंत अभी नहीं हो सकता, उसका अंत कभी नहीं होता, क्योंकि इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता।
0: वाह बहुत बढ़िया, तो तुम्हें भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तुम्हें भी लगता है कि मेरा अंत अभी नहीं हो सकता, कोई कितना भी रुकावटें आए, कितनी भी बाधाएं आए, है ना? तो बाधाएं रुकावटें तो आती रहती होंगी, तो तुम्हारा उस वक्त मन कहता है नहीं, निराला को याद करती होगी, इस कविता को याद करती हो कि नहीं?
1: हाँ जी।
0: तो लगता है कि अरे अभी तो मेरा अंत नहीं होना चाहिए। साथियों मैं थोड़ा सा बता दूं कि निराला जिस समय कविता लिखना उन्होंने शुरू किया था, एक शुरुआती दौर था, तो उस शुरुआती दौर में निराला के कवित्व को या कवि रूप को सब लोगों ने सहर्ष नहीं स्वीकारा था, आसानी से नहीं स्वीकारा था। कोई भी बहुत ही संघर्ष के बाद कुछ बनता है, चाहे कवि हो या कोई और रूप हो, तो हर रूप बड़े ही संघर्ष के बाद बनता है। निराला भी उतने ही संघर्षशील थे उस समय, और वो संघर्ष के समय की कविता है जब शुरुआती दौर में आलोचकों ने आसानी से उनके कवित्व को नहीं स्वीकारा था। तो कहीं ना कहीं इसमें भाव जो आ रहा है, वसंत ऋतु का तो है ही, उसमें यह भाव भी आ रहा है कि जो मैं है मेरा है, ये जो मेरा शब्द आ रहा है, ये जो कवि का मेरा है, कवि का जो मैं है, वो बार बार कहीं ना कहीं उस ओर इशारा कर रहा है कि वह जो लिखता पढ़ता रहा है, वह जो कवि है, वो अपने आप में विश्वास है उसको, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई निराश नहीं कर सकता, उसको कोई उसका अंत नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आलोचक हो, चाहे कोई और हो, कोई भी उसका अंत नहीं कर सकता है, वो जो ठान चुका है वो करेगा। और इस कविता को पढ़ करके आपके मन में भी यही बात आ रही है कि हम जो ठान लेते हैं वह करके दिखाते हैं, ठान लिया कि करना है तो कर लेंगे। तो अब इस कविता को थोड़ा सा शुरुआत से पढ़ो कि जैसे शुरुआत ही कवि कह रहा है कि अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अब मेरे वन क्यों कहा होगा भाई, उसका कोई जंगल है क्या, यानी कवि ने कोई जंगल खरीद रखा है? नहीं ना, तो फिर क्या हो सकता है?
1: मेरे वन, वन मतलब जीवन।
0: हाँ, यानी यहाँ कोई अलंकार है, कौन सा अलंकार है? वन रूपी मेरा जो मन है, है ना, जो वन रूपी मन है, मेरा जीवन है, मेरे वन में, मेरे जीवन में, मेरे वन वन रूपी जो जीवन है उसमें अभी तो वसंत आया है, यानी अभी तो कलियां खिल रही हैं, अभी तो खुशबू बिखेर रही हैं, तो अभी नया नया नए नए पत्ते आ रहे हैं, लाल लाल कोंपले आ रही हैं, फूल आ रहे हैं, पूरा सुगंधित वातावरण है, तो ये खिला हुआ खिलने का मौसम है, तो इस खिलने के मौसम में अंत की बात हम कैसे सोच सकते हैं? तो अंत तो अभी नहीं आएगा। तो कहीं वो मन में ये महसूस कर रहा है, वो उत्साह है उसके मन में, उसको विश्वास है, और वो लोगों को कहीं एक चुनौती भरा कह सकते हो संकेत भी कर रहा है, चुनौती भरा निर्देश भी दे रहा है कि नहीं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो उसका अंत नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो टक्कर ले रहा है, जमाने से टक्कर ले रहा है, और जमाने से टक्कर लेते हुए कह रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि उसका कोई अंत कर सके। तो अभी इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि कवि ने मेरा अंत क्यों कहा होगा, और कह रहे हैं वसंत की बात लेकिन फिर भी मेरा कह रहा है, यानी कहीं ना कहीं उस वसंत में वह अपने जीवन को देख रहा है, एक पूरा रूपक चल रहा है। हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात। अब सारा कह रहा है कि कैसा है ये जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये जो कलियां दिखाई दे रही हैं, ये पत्ते जो दिखाई पड़े, ये क्या है? ये ही तो उसके शरीर है। ये जो वसंत है उसका शरीर ये है, यानी ये जो हरापन है, ये जीवन में जो आर्द्रता है, ये जो ताजगी है, अभी तो उस महसूस कर रहा है उस ताजगी को, तो इस ताजगी का अंत वह भी अपने सामने नहीं देख सकता। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रति, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही है कवि ने कि फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। अब प्रत्यूष का मतलब क्या होता है?
1: खुशनुमा।
0: ये सिर्फ नहीं, खुशनुमा सुबह हो सकती है, उषा, उषा इसमें जुड़ा हुआ है ना। प्रत्यूष का मतलब होता है भोर की सुबह, सुबह जो होती है ना, जो भोर यानी बहुत सुबह होने से पहले पहले का समय, सूर्योदय से पहले पहले का समय। तो अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी तो सूर्योदय भी नहीं हुआ है, यानी अभी तो उसने लिखना शुरू किया है, अभी तो उसके जीवन में तरह तरह के सपने आने शुरू हुए हैं, और उन सपनों को वह कैसे छोड़ देगा? कह रहा है कि निद्रित कलियों पर, जो सोए हुए कलियां अभी दिखाई पड़ रही है ना, उनको वह प्रत्यूष मनोहर, उनको सुबह दिखा देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है लेखक। ज्यादा खूबसूरत बात ये है कि सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है, बल्कि अपने आसपास के पूरे वातावरण में एक बदलाव की बात कर रहा है, कि पूरे वातावरण में वो बदलाव लाने में सक्षम होगा। वो चाहता है कि ये बदलाव, ये ताजगी, ये जो ऊर्जा उसके भीतर दिखाई पड़ रही है, ये ऊर्जा, ये ताजगी, ये बदलाव उसके आसपास के माहौल में भी हो। तो सारी कलियों को खिलने की बात कर रहा है, सिर्फ अपने खिलने की बात नहीं कर रहा है। तो वसंत में जैसे पूरा का पूरा जंगल, ऐसा नहीं है कि एक फूल खिल जाएगा और पूरा का पूरा नहीं खिलेगा, पूरा का पूरा बागीचा खिल उठता है, तो उसी तरह से ये पूरे के पूरे बदलाव की बात कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि देश में बदलाव की बात कर रहा है, केवल एक की बात नहीं कर रहा है, ये एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, जन जन में बदलाव, पूरे देश में ये ऊर्जा हो, पूरे देश में ये ताजगी हो, ये माधुरी हो, ये खिलापन हो, ये खिलने का मौसम जिसको मैं कह रही हूँ, तो ये खिलने का मौसम पूरे देश में दिखाई पड़े, कोई एक नहीं, हर चेहरा उतना ही ताजगी भरा हुआ दिखाई पड़े। ठीक है, फिर वो कहता है कि पुष्प पुष्प से तंद्रा

0: पानी डालते हो और क्या करते हो, खाद डालते हो, खाद डालते हो, सड़े गले पत्तों को हटाते हो, यानी उसकी निद्रा को तुम दूर करते हो। यही है उसकी निद्रा को दूर करना, मतलब उसमें ताजगी लाना, मतलब कि अगर वह नहीं किन्हीं कारणों से वह रोग युक्त हो गया है तो उसको रोग मुक्त करने के लिए हमें तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर हमारे समय में, हमारे जमाने में, हमारे देश में, हमारे लोगों में कहीं किसी तरह की कमी दिखाई पड़ रही है, कोई ऊर्जा किन्हीं कारणों से नहीं दिखाई पड़ रही है, वो ऊर्जा किसी भी तरह की हो सकती है, तो किसी भी कारण से अगर उनमें आलस्य दिखाई पड़ रहा है और वो थोड़े निराशा भरे समय में जी रहे हैं, तो उस निराशा को आशा में बदलने की क्षमता कवि में है। वो खुद कहता है कि मैं बदल सकता हूँ और उसको एक आशावान, ऊर्जावान, एक खिलने के समय में बदल सकता हूँ। सभी लोगों के चेहरों में वो ताकत और ऊर्जा होगी, ऐसा विश्वास। ये बहुत बड़ी चीज है कि जब हमारे भीतर विश्वास होगा तब हम दूसरों को विश्वास दे पाएंगे। किसी दिन तुम उदास होती होगी तो तुम्हें क्या लगता है, दूसरे लोग भी तुम्हें देखकर उदास ही हो जाएंगे, कोई खुश नहीं होगा। तो तुम अगर निराश रहोगे तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी वैसा ही होता है ना। या तुम्हारी मम्मी किसी दिन निराश होगी तो तुम भी थोड़ी उदास हो जाती हो, होता है ना। तुम्हारी कोई मित्र ऐसी होती होगी तभी तुम्हें ऐसा लगता होगा। यानी एक व्यक्ति की उदासी या निराशा दूसरों पर प्रभाव डालती है। तो यहाँ लेखक बहुत ही कह सकते हो बहुत ही सशक्त तरीके से, बहुत ही ऊर्जावान तरीके से कह रहा है कि नहीं, जब तक वह अपनी तंद्रा नहीं दूर करेगा, अपने आलस्य को नहीं दूर करेगा और अपने अंदर एक विश्वास, एक आत्मविश्वास उसके नहीं आएगा, तब तक वह दूसरों में विश्वास नहीं भर सकता है, विश्वास नहीं उनको जगा सकता है। और इसको उसने रूपक किस चीज का लिया है, वसंत का रूपक। तो बगीचे के रूपक से, वसंत के रूपक से उसने यह बताने की कोशिश की है। ये छायावाद जिसका मैंने नाम लिया था, छायावाद के समय में जितने भी कवियों ने लिखा है ना साथियों, चाहे प्रसाद जी की कविता पढ़ना, चाहे पंत जी, उन लोगों ने प्रकृति का ऐसा ही उपयोग किया है। उन्होंने अपनी बात, मैं की बात, मैं मतलब अपनी बात, जो अपनी बात कहनी है, अपने ढंग से जो सोचता है व्यक्ति, अपना जो सपना देखता है, वो सब कई बार हम प्रकृति के माध्यम से कहने की कोशिश करते हैं। ये भी एक शैली है, एक तरीका है। तो जैसे तुम किसी और के बहाने से अपनी बात को कह दो, तो उसी तरह से यहाँ भी सीधे सीधे ना कह करके कई बार हम किसी के बहाने से कहते रहे, ये एक शैली है। तो आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी कविताओं को पढ़िएगा तो देखिएगा कि कवि कौन सी शैली का प्रयोग कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या वह किसी के बहाने से कह रहा है, क्या वह सीधे सीधे कह रहा है, तो किस समय की कौन सी विशेषता रही है, यह भी आपको समझ आती चली जाएगी धीरे धीरे। और जब पढ़ेंगे तो और भी जानकारी आपकी हासिल होती चली जाएगी। तो इस पूरी कविता में द्वार, अब अंतिम पंक्तियों पर आ जाते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अब और एक ध्यान देने की जरूरत है, मेरे वे जहां अनंत। अब मेरे कौन भाई, कौन है उसका अनंत, सवाल उठता है ना मन में, है वह मेरे जहां अनंत। तो द्वार दिखा दूंगा उनको, अनंत अनंत इच्छाएं, यानी बहुत सारी इच्छाएं जो उसकी है, जहां पर कहां है, जिस द्वार के से खुल करके जाएगा। तो मैं सारी तंद्रा को, निद्रा को, जहाँ कहीं निराशा है, जहाँ कहीं तंद्रा है, उन सब को, निद्रा को हम किस में बदल देंगे, एक ऐसा दरवाजा दिखा देंगे जहाँ से सिर्फ क्या दिखाई पड़ता है, वो सपने दिखाई पड़ते हैं, वो सपने जो पूरे हो रहे हैं, वो सपने जो हम पूरे कर सकते हैं, वो सपने जो हम अपने कोशिश करें तो पूरे हो सकते हैं। हम थोड़ा सा अपने को सचेत रखें, सजग रखें। तो सजगता, सचेतता कैसे हमें अपने उस मंजिल तक पहुंचाती है, उस जिस लक्ष्य तक हम जाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य और जिस मंजिल तक हम पहुंचना चाहते हैं, उस लक्ष्य और मंजिल को कैसे पाने में मदद करती है, ये कवि ने इस कविता में कहने की कोशिश की है। सजगता और सचेतता और एक तंद्रा को छोड़ भूलना और सपने को देखना, ये बहुत जरूरी। सपनों के देखने की बात तो और लोगों ने भी बहुत से की है, किसने की है बताओ,
1: महात्मा गांधी ने
0: सपने की। सब लोग कहते हैं कि सपने देखो, लेकिन आंख बंद करके नहीं, खुली आंखों से, है ना। और किसने, एक बहुत नाम लिया जाता है, वैज्ञानिक है हमारे देश के,
1: अब्दुल कलाम।
0: हाँ, अब्दुल कलाम जी, उन्होंने भी सपनों के बात कही है। बहुत से लोग आजकल कह रहे हैं, शिक्षा की दुनिया में हम अक्सर ये चर्चा करते हैं, तो सपने देखना, खुली आंखों से सपने देखना, यानी कुछ लक्ष्य लेके चलना, कुछ मंजिल तय करके चलना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर हम लक्ष्य विहीन होंगे, अगर हम मंजिल विहीन होंगे, हाँ, तो हमारे रास्ते पर चलना हमारे

0: मुश्किल हो जाएगा। तुमको पता है कि किसी दिन रास्ते पर या तो यूं ही घूमते हुए चलो, वो भी मजा आएगा। उसमें तुम्हारा लक्ष्य होता है कि तफरी करना, घूमना, रास्ते के पेड़ों को देखना, रास्तों को जानना। लेकिन जब मंजिल तय होती है तो तुम्हारे चरण जो है थोड़े तेज हो जाते हैं, तुम्हारे पांव जो है और तेज चलने लगते हैं और आगे आगे चलने पड़ते हैं। तो ये इस कविता की बहुत बड़ी विशेषता है। चलो थोड़ी सी बात करते हैं, कविता पढ़ते हुए कुछ चीज हमारे, कुछ बातें हमारे ध्यान में आई होंगी, जैसे अभी न होगा मेरा अंत। अब इसकी दूसरी पंक्ति कोई बनाओ तो जरा, कविता के साथ खेलो, शब्दों की के साथ खेलो, कोशिश करो। अभी अभी इसने तो दूसरी पंक्ति जोड़ी है, लेकिन आप अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने बहनों भाइयों के साथ इस खेल को करो और अगली पंक्ति जोड़ने की कोशिश करो। अंत के साथ कितने तुक हो सकते हैं, कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? सबसे पहले क्या करो कि अंत के साथ कौन कौन से तुक हो सकते हैं, कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, उन शब्दों की एक लिस्ट बनाओ, सूची बनाओ और उन शब्दों को फिर अपने सपनों के साथ पिरो दो। कोशिश करो, है ना, कंत हो सकता है, संत हो सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है, अनंत हो सकता है, अनंत तो कवि ने भी प्रयोग किया है ना, मंत हो सकता है, बहुत मंत्र हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो कोशिश करो कि तुक वाले जो शब्द हैं उन तुक वाले शब्दों को पहले एक सूची बनाओ और उन तुक वाले शब्दों को फिर अपनी इस लाइन में, अपनी पंक्ति में डालने की कोशिश करो। ये खेल करके देखो, बड़ा मजा आएगा, बहुत सारे शब्द तुम सीख पाओगे इससे, शब्दों की लयात्मकता को समझ पाओगे, शब्दों के अर्थ को भी समझ पाओगे, यानी शब्द भंडार भी बढ़ेगा, अर्थ भी समझ में आएगा और भाव भी समझ में आएगा, बहुत सी चीजों पर आप बात कर। साथ ही एक और कोशिश करो कि अगर मान लो गांधी कहते कि अभी न होगा मेरा अंत, तो क्या करते, क्या निराला की तरह ही बात करते गांधी, या कुछ और कहते, क्या कहते?
1: वे कहते अभी न होगा मेरा अंत, अभी तो मुझे है जो मेरी इच्छाएं अनंत।
0: हाँ,
1: अभी तो मुझे बढ़ना है।
0: कहाँ बढ़ना है, क्या करना है? देश को आजाद कराना,
1: देश को आजाद
0: करना। तो इसको जरा कविता में बांध करके कोशिश करो, करना है ना, कविता बनाने की कोशिश करना। इसी तरह से एक जैसे कोरोना समय है, अभी कोरोना के काल में हम लोग अगर उत्साह से भर करके और बहुत ही मेहनत से, बहुत सचेतता से, संघर्ष से जो लगे हुए हमारे वॉरियर जिसको हम लोग कह रहे हैं, डॉक्टर हैं या और भी, केवल डॉक्टर नहीं है, नर्स हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं, वो सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो सारे लोग क्या कहते होंगे, अभी हम किसी भी तरह से थकेंगे नहीं, तुम चाहे लाख कोशिश करो कोरोना। तो उनके लिए एक कविता बना के कोशिश करो, उनके लिए एक पैराग्राफ लिख के कोशिश करो, अनुच्छेद बनाओ और तुम देखो वो कहेंगे तो क्या क्या कहेंगे, है ना?
1: अभी तो मुझे कोरोना से लड़ना है। घर पे बैठ के हमें कोरोना को हराना है।
0: तो हराने के लिए क्या करना होगा? अभी तो हम सबको बिल्कुल उत्साह से परिपूर्ण रखेंगे, किसी का उत्साह खत्म नहीं होने देंगे, किसी को हारने नहीं देंगे, किसी को हारने, जो मन से हार जाता है ना वो शरीर से भी हार जाता है। तो मन से नहीं हारने देने की कोशिश करनी है इस समय में, तो अलग अलग क्षेत्रों में। अब यही बात अगर मान लो पर्वतारोही है, पर्वत पे चढ़ रहा है ना, एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहा है, तो वो पर्वतारोही क्या करेगा? अरे अरे आओ, कोई असंभव शब्द नहीं है इस तुम्हारी डिक्शनरी में, तुम्हारे शब्दकोश में, अपने साथियों को क्या कहेगा? असंभव नहीं है, एकदम चलते चलो आगे, अब बस जरा सा रह गया है, अब जरा सा रास्ता रह गया, यही कहेगा ना? वो नहीं कहेगा कि एक बहुत लंबा रास्ता है, बहुत ज्यादा ऊंचाई है, यानी थोड़ा थोड़ा करके हम अगर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारी मंजिल हमारे साथ होगी और हम जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। तो हर क्षेत्र में झांकने की कोशिश करो, चाहे वो पर्वतारोही का क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टर्स का देख लो, चाहे वैज्ञानिक की दुनिया देखो, चाहे संगीतकार की दुनिया देखो, तो संगीत की दुनिया भी और हमारे मजदूर और किसानों की दुनिया भी देखो। जो मजदूर किसान कैसे कहेंगे, चाहे कितनी भी वर्षा क्यों ना हो वो हारते नहीं है, एक बार फसल खराब हुई दूसरी बार फिर लगाते हैं और फिर फसल लगाते हैं और फिर से फसलों का इंतजार करते हैं, फसलों के पकने का इंतजार करते हैं, फिर से काटते हैं, तो वो किसी भी हाल में हारते नहीं है, चाहे स्थितियां कितनी भी खराब हो। तो इन सारी चीजों पर हमें देखना पड़ेगा। अब इसमें देखो हरे हरे ये पात शब्द आया है, ये हरे हरे शब्द क्यों आया है भाई, दो बार क्यों कहा होगा कवि ने, सोचा है कभी आपने? पुष्प पुष्प आया है, पुष्प पुष्प से खींच लूंगा तंद्रा लस पुष्प पुष्प से वाला जो आया है, क्यों आया है हरे हरे ये पात, क्यों आया है
1: हरे हरे? एक तो हमारा ये अलंकार होता है।
0: क्या अलंकार होता है?
1: यामक अलंकार।
0: यामक तो तब होता है जब एक शब्द का दूसरा अर्थ हो और दूसरे शब्द का दूसरा। ये पुनरुक्ति है, ये पुनरुक्ति अलंकार है। लेकिन पुनरुक्ति तब होता है जब दो बार आए हैं वही शब्द, लेकिन उसका अर्थ अलग नहीं होगा। दोनों हरे का शब्द, हरे का मीनिंग एक ही है, लेकिन जब एक हरे का अर्थ दूसरा होता तो यमक हो जाता। ठीक है, यहाँ पर वह बात नहीं कही है। अब कोमल गात शब्द आया है। कोमल क्या है यहाँ पर? गात क्या है? गात मतलब
1: गात यानी शरीर।
0: शरीर और कोमल,
1: कोमल जो है वो उसकी विशेषता बता।
0: अगर मान लो तुम्हें ये कविता लिखनी होती तो कोमल की जगह कौन सा शब्द लिखती, कौन सा विशेषण लिखती?
1: सुंदर शरीर।
0: सुंदर और भी और कुछ लिखती? बहुत सी चीजें। निर्मल शरीर होता, वाह बहुत सुंदर है। निर्मल शरीर। तो ऐसे बहुत से शब्द आपको मिलेंगे। अब एक और काम करना, अभी तो बहुत से समय है रेणुका, आप भी करो, अपने साथियों को भी बताओ, और आप लोग भी साथियों ये जरूर करना कि वसंत पर और भी बहुत सी कविताएं आपने पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी, और आपको इंटरनेट पर भी मिल सकती हैं। कुछ पुरानी कविताएं उठा लीजिए, किताबें उठा लीजिएगा, पत्रिकाएं उठा लीजिएगा, उन पत्रिकाओं से वसंत संबंधी कविताओं का एक संचयन तैयार करिए। खुद वसंत संबंधी संचयन उन कविताओं को चुनिए जो आपको पसंद हो। और एक और काम करिएगा कि उन कविताओं को जब संचयन करिए तो आप ये भी करिएगा कि उसकी एक भूमिका भी लिखिएगा, छोटी सी, छोटी सी भूमिका। अब उसमें क्या लिखोगे? ये लिखो कि ये कविताएं क्यों पसंद है, पहली बात तो ये आ जानी चाहिए। फिर इन कविताओं में 10 कविताएं या 20 कविताएं आपने चुनी तो उन 10 और 20 कविताओं में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है, क्या अलग दिखाई पड़ रहा है, उसको एक पैराग्राफ में लिख दो। फिर ये भी लिख सकते हो कि कौन से नए शब्द आपको जानने को मिले, कौन से नए क्षेत्रों के बारे में जानने के मिले और कौन से नए शब्द आपको जानने को मिले, यह भी लिखना। तो कोशिश करो और आप पाओगे कि एक बड़ी सुंदर सी किताब आपने खुद बना दी है, खुद एक चयन तैयार कर दिया है। और ये चयन आप अपने साथियों को भी सुनाइए, अपने अध्यापकों को सुनाइए और अपने आस पड़ोस वालों को भी सुनाइए। मैं समझती हूँ कि आप वसंत को सुनाते सुनाते आप वसंत से परिपूर्ण हो जाएंगे और ताजगी, उत्साह और ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आज ध्वनि पर हम इतनी ही चर्चा करेंगे, लेकिन इस कविता के संदर्भ में और भी बातें हम आपसे करते रहेंगे, लेकिन आज की चर्चा यही खत्म होती है।
2: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वन्यांकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान। निर्माण अजीत होरो। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए।

0: शारदा 90.8 FM. सोनू शारदा.
1: ताज़ा खबर. कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं. कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ. वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज.
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा. रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ. दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में.
3: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी. स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए.
5: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड। क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
2: माँ जी, मुझे टीबी है।
1: टीबी? और छुपा कर रखा?
2: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM पर एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है स्टार्टअप चौराहा। इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें होती हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि एक सपना है जो कि आपका अपना है, उस सपने के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस सपने को साकार करना चाहते हैं, स्टार्टअप की दुनिया में बहुत कुछ खास करना चाहते हैं। उसके लिए जरूरी है एक अच्छी सोच, मेहनत, लगन के साथ आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि उसके साथ साथ बहुत जरूरी है अच्छी अच्छी बातें आप अपनी जिंदगी में शामिल करें, उन लोगों के अनुभव के साथ आप आगे बढ़ें जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ खास कर चुके हैं। आज हम जानेंगे कि डिजाइन का क्या अपना रोल है और शारदा यूनिवर्सिटी का अपना एक डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि टॉय इंडस्ट्री को, यानी कि भारत की टॉय इंडस्ट्री को हमें आगे लेकर जाना है, गेम प्लान के तहत आगे बढ़ना है, ये बाल वाटिका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कर कमलम प्रोग्राम क्या है, किस तरीके चैलेंजेस आते हैं, इन सारी तमाम बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हैं डॉक्टर प्रवीण पचौरी, डायरेक्टर यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ही इज एन एक्सपर्ट इन प्रोडक्ट डिजाइन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस डेवलपमेंट। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित सहगल, डायरेक्टर शारदा लॉन्चपैड फेडरेशन शारदा यूनिवर्सिटी, और इस प्रोग्राम को मॉडरेट कर रहे हैं मिस्टर दिव्यांशु शुक्ला, फाउंडर पेपस्वैप, पॉलिसीज ओवर पॉलिसीज, वर्किंग एज पॉलिसी एंगेजमेंट पार्टनर फॉर यूपी स्टार्टअप पॉलिसी। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है शारदा लॉन्चपैड ने पेपस्वैप के सहयोग से, और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर ये विशेष कार्यक्रम।
2: तो आप सभी का स्वागत है स्टार्टअप चर्चा के दूसरे एपिसोड में, जिसको ऑर्गेनाइज और सपोर्ट किया है शारदा लॉन्चपैड ने। आज का जो एपिसोड है काफी रोमांचक है मेरे लिए, और मैं भी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अपने गेस्ट को, डॉक्टर प्रवीण पचौरी जी जो डायरेक्टर है यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के, और हमारे रेगुलर मार्गदर्शक और मेंटर डॉक्टर अमित सहगल जी जो डायरेक्टर है शारदा लॉन्चपैड के। बिना कोई टाइम वेस्ट करे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारे पास, डिजाइन और स्टार्टअप फाउंडर्स। और मेरे लिए खुद ये फर्स्ट सेशन है कि मैं डिजाइन को बहुत ही करीबी से जानना चाहूंगा, तो स्टार्ट करते हैं प्रवीण सर से। सर पहले तो आप कुछ बता पाए अगर यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के बारे में, वहीं से शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। कुछ बताइए सर इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के बारे में, और कैसा वहाँ पे उसका क्या कोर फोकस है, क्या उसका मिशन स्टेटमेंट है, और कैसे वो अपने आप को कैसे वो स्टार्टअप फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योरशिप से अलाइन कर रहे हैं।
3: उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन 2017 में माननीय मुख्यमंत्री के इच्छानुसार नोएडा में जो AKTU का एक्सटेंशन सेंटर था वहां स्टार्ट किया गया, और संस्थान का विजन ये है कि हम उत्तर प्रदेश के जो आर्टिसंस के प्रोडक्ट हैं उनको इंटरनेशनल पहचान दिला सकें। तो संस्थान का जो मिशन है वो उसी पथ को पूरा करने के लिए है, और हमारी कोशिश ये है कि हम जो करंट इंडस्ट्रीज हैं, MSME इंडस्ट्रीज हैं, उनके प्रोडक्ट्स को रिडिफाइन करें, और आज के बदलते परिवेश में जहां पर IPR प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट्स की डिमांड हो रही है, हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करके दें जो इंडस्ट्रीज जो है इंटरनेशनल मार्केट में यूज कर सके।
2: राइट सर, इसी से रिलेटेड सर दूसरा क्वेश्चन मैं पुट करना चाहूंगा कि डिजाइन, अब आप यहां पे जब बच्चों से मिलते हैं तो आप कैसा सिनर्जीज उसमें मैच देखते हैं कि डिजाइन और स्टार्टअप फाउंडर्स, ये दोनों के अंदर कितनी एनर्जी, कितनी सेम एनर्जी सिनर्जीज मैच कर रही है, इसके बारे में कुछ बताना चाहें।
3: बेसिकली अभी तक क्या था कि लोग डिजाइन का मतलब समझते थे इंटीरियर डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, एरोस्पेस डिजाइन, एयरक्राफ्ट डिजाइन, तो सभी अलग अलग फ्रंट्स पर काम कर रहे थे। लेकिन अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्पेस की रिक्वायरमेंट सब जगह बढ़ती जा रही है, स्पेस कम होता जा रहा है, जगह हमारे पास कम है, तो उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमको रिडिफाइन करने पड़ रहे हैं। तो डिजाइन जो था, जो सब अलग अलग काम कर रहे थे, उसको एक जगह लाने का प्लेटफॉर्म बन गया। अभी जो डिजाइन के कोर्सेज डेवलप किए जा रहे हैं, हालांकि उसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन अलग अलग इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट विशेष रूप से प्रोडक्ट डिजाइन पर काम करता है, एर्गोनॉमिकल डिजाइन पर काम करता है, VUI UX डिजाइन पर काम करता है, तो सभी डिजाइन कहीं ना कहीं आने वाले जो हमारे स्टार्टअप हैं या जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए जरूरत बनते जा रहे हैं। क्योंकि कन्वेंशनल डिजाइन को फॉलो करके आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी मार्केट में अपील क्रिएट नहीं होती है, उसकी मार्केट स्पेस क्रिएट नहीं होती है। क्योंकि जो करंट प्रोडक्ट मार्केट में है, अगर आपको उसको रिप्लेस करना है तो आप जो नया प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है वो कई मायनों में, जैसे इर्गोनॉमिकल मतलब प्रयोग के हिसाब से जो है कंफर्टेबल होना चाहिए, उसमें जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो कम से कम होना चाहिए, उसको जिस इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है उसका प्रोसेस टाइम कम से कम होना चाहिए, जिन मटेरियल्स को प्रयोग करके बनाया जा रहा है उनका मटेरियल्स का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस अगर हमको बनाने हैं तो हमको प्रोडक्ट को दोबारा से डिजाइन करना ही पड़ेगा। न केवल अब प्रोडक्ट्स के डिजाइन की बात रह गई है बल्कि अब तो हम शहरों को भी डिजाइन कर रहे हैं। तो पहले डिजाइन का मतलब लोग समझते थे जो है कि खाली हम कमरे या बिल्डिंग या उसके अंदर की चीजें डिजाइन करते हैं, अभी जब हम पूरे का पूरा शहर प्लान करते हैं तब भी हम डिजिटल ट्विनिंग का सहारा लेते हैं जो डिजाइन का ही एक फील्ड है। तो हमारे जो डिजाइनर्स हैं अब वो समय की एक ऐसी जरूरत बन गए हैं कि कोई भी कंपनी, चाहे वो स्टार्टअप हो या कॉरपोरेट जगत हो, बिना डिजाइनर्स की मदद से आज आगे नहीं बढ़ सकता। तो धीरे धीरे हमें ये समझना होगा कि जो डिजाइन है वो आज की बेसिक नीड बन गया है, और कोई भी चीज जो हम प्लान कर रहे हैं उसमें जो भी हम टीम डेवलप करें उसमें कोई ना कोई डिजाइनर होना चाहिए।
4: राइट सर, तो मैं सेम क्वेश्चन ही अमित सर के पास ले जाना चाहूंगा, क्योंकि प्रोबेबली अभी तक से सर मैंने तो डिजाइन को सिर्फ ऐसे ही देखा था कि यूआई यूएक्स है स्टार्टअप्स के कंसर्व में, और जो ट्रेडिशनल जैसा सर ने बजाया कमरा डिजाइन कर रहे हैं या फिर फैशन डिजाइन कर रहे हैं। करेंटली हम लोग यूपी में स्मार्ट सिटीज डेवलप कर रहे हैं और वो काफी अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो सर ने जैसा बताया कि फ्यूचर के अंदर हम सिटीज भी डिजाइन करने वाले हैं, इसके अंदर स्टार्टअप्स के लिए भी स्कोप है अभी रहते हुए, अगर ये अभी से मिलना स्टार्ट हो जाए, इंट्रैक्शन करना स्टार्ट हो जाए फ्यूचर को देखते हुए, राइट, तो उसमें भी नई अपॉर्चुनिटीज आने के चांसेस हैं।
5: बिल्कुल दिव्यांशु जी, बहुत अच्छा आपने एक विषय उठाया है, डिजाइन का क्या रोल है और वो भी खासकर स्टार्टअप्स में, क्योंकि अगर हम किसी भी स्टार्टअप की एक जर्नी देखें तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत होती है कि मुझे क्या नया बनाना है। हर एक स्टार्टअप के मन में रहता है कि मुझे कुछ नया करना है तभी मैं आगे जाकर उसमें कुछ सक्सेसफुल हो पाऊंगा, मैं जो भी प्रोडक्ट या सर्विस दे पा रहा हूँ वो मेरा आगे मार्केट में जाएगा। तो नया करने के लिए उसकी जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से या डिजाइन से शुरुआत होती है, और बहुत सारे अलग अलग एरियाज के अंदर स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और इन सारे अलग अलग टाइप के स्टार्टअप्स को अगर हम एक साथ जोड़ें तो जो हमारा स्मार्ट सिटीज का, और उसके बाद अगर हम विलेजेस पे भी जाएं तो स्मार्ट विलेज का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, और अगर हमें ये देखना है कि हमारी जो भी इकोनॉमी है इंडिया की वो ज्यादातर गांव से विलेजेस से जुड़ी हुई है तो उनको भी हमें डेवलप करना है, तो स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट विलेज को भी अगर डेवलप करना है तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जो कोई हेल्थ में काम कर रहा है, कोई एजुकेशन में काम कर रहा है, या सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, तो ये सारे सॉल्यूशंस जब एक साथ जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं इन सबके डिजाइन एक दूसरे के साथ अलाइन जब होंगे तब वो मिलके ओवरऑल एक बड़े सिस्टम को सपोर्ट कर पाएंगे, और वहां से फिर हमारा जो स्मार्ट सिटीज का या स्मार्ट विलेजेस का कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आएगा। तो ये सारे डिजाइन को कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ना पड़ेगा, इनका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमें लेकर आना पड़ेगा, और उसके लिए ये डिजाइन की बेसिक समझ हर एक स्टार्टअप फाउंडर को होनी चाहिए, और जो भी इनकी टीम है स्टार्टअप फाउंडर की उसमें कहीं ना कहीं उनको एक एक्सपर्टाइज रखना पड़ेगा कि उसमें डिजाइन की समझ रखने वाले लोग हों, ताकि जब अलग डिजाइन बन रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक चीज डिजाइन की है तो वो मेरे सिस्टम के अंदर फिट नहीं आ रही है दूसरे प्रोडक्ट के साथ। तो आज की डेट में इंटीग्रेशन और मल्टीडिसिप्लिन का टाइम है, यहां पर कोई भी अपने एक स्टार्टअप को या अपने प्रोडक्ट को अलग से लेके नहीं चल सकता है, तो कहीं ना कहीं सभी को एक साथ जुड़ना है और ओवरऑल एक बड़े सिस्टम को बिल्ड करना है, तो वहां पर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और शारदा यूनिवर्सिटी में डिजाइन डिपार्टमेंट में हमारा इसी चीज के ऊपर फोकस है, जो हमारा स्कूल ऑफ डिजाइन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, तो वो कहीं ना कहीं इसी तरह से मल्टीपल एस्पेक्ट्स को लेकर चलता है, तो उसमें आर्किटेक्चर का पार्ट भी है, लैंडस्केपिंग का पार्ट भी है, देन प्रोडक्ट डिजाइन भी है, फैशन डिजाइन भी है, जहां पर अलग अलग मटेरियल्स के ऊपर काम हो रहा है कि आप सस्टेनेबल क्लोथिंग में कैसे जा सकते हैं, कलर्स डाइज में केमिकल का इस्तेमाल कैसे कम से कम हो, नेचुरल फैब्रिक के ऊपर कैसे जाएंगे, तो देन इंटीरियर डिजाइन का पार्ट भी उसके अंदर है कि कैसे आप, जैसे सर ने बोला कि कम जगह के अंदर ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से आप उस स्पेस को यूटिलाइज कर पाएं, कैसे मैक्सिमम फीचर्स फैसिलिटीज आप दे पाएंगे। ये सिर्फ घरों में ही नहीं है, फैक्ट्रीज भी जो आ रही हैं आने वाले समय में, जो इंडस्ट्रीज होंगी या छोटे जो स्टार्टअप्स हैं ऑफिसेज होंगे, तो वहां पर भी उनको बहुत कम जगह के अंदर ज्यादा से ज्यादा सर्विस देनी है, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो स्पेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा, तो ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आना, तो इसके अंदर डिजाइन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ही।
4: तो जहां तक मैं समझा अपनी जर्नी के अंदर, मैं आज तक हमेशा ये सुनता था कि टेक्नोलॉजी विल चेंज द रूलर यू नो इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द रूलर शेप ऑफ इंडिया. लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन का होना भी जरूरी है, क्योंकि वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो हो सकता है फास्टर जर्नी को कर पाए. तो
3: वो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट
4: है. राइट राइट, कंप्लीमेंट इज द राइट वर्ड. और सर सेकेंडली, हम लोग आगे जाते हुए ये जानना चाहेंगे कि आप इंस्टीट्यूट में जैसे काम कर रहे हैं अभी, तो आपने डिज़ाइन और स्टार्टअप का कोई सक्सेस स्टोरी अगर आप बताना चाहें अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, कि डिज़ाइन से रिलेटेड कोई नया स्टार्टअप ने आगे किया हो आपके नीचे, आपके इंस्टीट्यूट के अंदर.
3: यूँ तो हमारे इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने पिछले 6 महीने में एक स्पेशली एक सेगमेंट सिलेक्शन किया, एंड दैट सेगमेंट इज टॉय एंड गेम्स डिज़ाइन. तो यहाँ भी हमने एक पर्टिकुलर फ्रेम फिट किया कि वी शुड डिजाइन द गेम्स ओनली फॉर द किड्स विच आर फ्रॉम 3 to 6 years, बिकॉज इन आवर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द गवर्नमेंट हैज एनविजन्ड ए न्यू कंसेप्ट दैट इज बाल वाटिका. तो बाल वाटिका जो कंसेप्ट है उसमें 3 से 6 साल के बच्चों को खेल के साथ साथ हमको पढ़ाना है. तो ये जो पढ़ाई का जो मॉडल है वो उसमें 3 dimensions मेनली हम कवर करते हैं. पहला डायमेंशन जिसको हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, यानी ब्रेन से किए जाने वाले काम जिसको हम ज्ञान योग भी कहते हैं. दूसरा साइकोमोटर डोमेन स्किल्स, यानी कि इंद्रियों से किए जाने वाले काम जिसको हम कर्मयोग की श्रेणी में रखते हैं. और तीसरा अफेक्टिव डोमेन स्किल्स, यानी कि भक्ति योग जैसे हृदय से किए जाने वाले काम. तो हमको 3 से 6 साल के बच्चे को इथिक्स भी सिखाना है, उसको अपनी इंद्रियों को प्रॉपर प्रयोग करना सिखाना है, और साथ ही उसकी बौद्धिक सोच को भी डेवलप करना है. तो क्योंकि ये खेल खेल में सिखाना है, इसलिए खेल का ऐसा डिजाइन होना बहुत जरूरी है. तो हमने 14 विशेष रूप से ऐसे बच्चों को तैयार किया जो है, जो इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं. और इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि हमने 4 महीने के अंदर ही जो गेम्स डेवलप किए वो बाल वाटिका के तीनों स्टेजेस के लिए डेवलप किए, स्टेज 1 3 से 4 साल, स्टेज 2 4 से 5 साल, स्टेज 3 5 से 6 साल. तो बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है वो 3 से 4 साल में अलग होती है, 4 से 5 में अलग होती है, 5 से 6 में बिल्कुल अलग होती है. तो उनकी जो फिजिकल एबिलिटीज हैं, उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने 14 गेम्स डिजाइन किए. एंड आई फाइंड इट वेरी फॉर्चुनेट टू से कि वो सारे के सारे गेम्स जो बच्चों ने इवॉल्व किए वो उस उम्र के बच्चों पर जाकर उन्होंने टेस्ट भी किए. और आई फील वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि बच्चों ने स्लम एरियाज में जाके जो है वो टॉयज एंड गेम्स जो है जो उन्होंने डेवलप किए, और उस उम्र के जो बच्चे उन्होंने 15-20 बच्चे इकट्ठे किए और उन बच्चों को जो है वो खेलने को दिया, जिससे कि एक्चुअली उस खेल को वो अडॉप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको गेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उसको पूरा किया. एंड फाइनली आफ्टर द कंक्लूजन हमने उन सभी को IPR के लिए, चाहे वो डिजाइन के माध्यम से या पेटेंट के माध्यम से, प्रोटेक्शन के लिए प्रोसेस चालू किया है. इसी बीच में हमने कुछ कंपनियों को जो ऑलरेडी टॉयज एंड गेम सेक्टर में काम करती हैं, टॉयज बनाती हैं, उनको भी वो प्रोडक्ट्स हमने शोकेस किए. तो इट इज़ ए वेरी डिलाइटफुल मोमेंट फॉर मी टू शेयर कि उनमें से एक कंपनी ने कहा कि इनमें से 2 प्रोडक्ट्स तो मैं चाहूँगा कि मैं कल ही प्रोडक्शन के लिए मुझे मिल जाए, तो मैं कल से ही प्रोडक्शन करना चाहूँगा. और जो लोग 20 साल से जो है इंडस्ट्री रन कर रहे हैं और टॉयज की बारीकी को समझते हैं, उनको जब हमने शोकेस किया तो दे वर हाईली डिलाइटेड कि आपने ये जो मतलब गेम्स डिजाइन कराएं, दे आर ऑसम. और हमारा मकसद ये है कि अगर एक बार हमको इनसे IPR प्रोटेक्शन मिल जाता है तो न केवल हम इन कंपनियों के साथ उन प्रोडक्ट्स को डेवलप कर पाएंगे, इससे बच्चों को भी कुछ आमदनी होगी. आज की तारीख में आइडिया इज मनी. तो आप जरूरी नहीं कि आप फैक्ट्री लगाएं तभी आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे. अगर आपके पास अच्छे पेटेंट्स हैं, अच्छी डिजाइन कॉपीराइट्स हैं, तो आप कंपनियों के साथ जो है रॉयल्टी पर काम कर सकते हैं. सो यू कैन मेक मनी आउट ऑफ योर ओन विजन. तो स्टूडेंट्स ने उसी कंसेप्ट को अडॉप्ट किया और अभी वो अपने सारे जो गेम्स उन्होंने डेवलप किए उनको IPR के थ्रू प्रोटेक्ट कराने के प्रोसेस में है. एंड सून वी विल साइन MOUs विद द कंपनीज दोस हु वांट्स टू मैन्युफैक्चर दोस टॉयज. और सबसे बड़ा ये जो हमारी इसमें वो है कि हम चाहते हैं कि जब ये बाल वाटी का कंसेप्ट गांव के लेवल पर इम्प्लीमेंट हो तो वहां हम स्ट्रगल ना करें, क्योंकि ये समझना बड़ा मुश्किल होता है एक आम टीचर के लिए जो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है चिल्ड्रन साइकोलॉजी पर, कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या होगी और उसे कैसे किस

0: पर्सपेक्टिव में देखते थे। अब हमने इसे कन्फाइंड पर्सपेक्टिव में लाया कि एक पर्टिकुलर डोमेन जैसे टॉयज एंड गेम्स को हमने पिक किया, तो दिस इज द कंसेप्ट विच वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट इन अदर सेक्टर्स नाउ। ये जो बच्चे डिजिटल ट्विनिंग में काम करना चाहते हैं, दे शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप सच प्रोडक्ट्स। जैसे वो एक शहर या एक गांव से शुरू करें, सबने जैसे कहा कि स्मार्ट विलेज की हम बात कर रहे हैं, तो चाहे हम विलेज से ही शुरू करें, बट वी शुड डेवलप ए परफेक्ट मॉडल विच कैन बी रेप्लीकेटेड सो दैट द स्टार्टअप कंपनी कैन गेट अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट देयर प्रोडक्ट इन ए कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट। तो आई फाइंड दैट बिकॉज द टेस्ट इज सक्सेसफुल, सो टुमारो द सेम रोड मैप कैन बी फॉलोड फॉर।
1: नहीं सर, इंडिजीनियस टॉय मार्केट तो पीएम सर का भी काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और सपना है। और
2: बहुत अच्छी जानकारी सर ने दी हमारे साथ, जो सोनू शारदा के श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं आसपास के रीजन के, तो मुझे लगता है टॉय सिटी के नाम से ग्रेटर नोएडा बहुत ज्यादा जाना जाता
0: है, इंडस्ट्री सेक्टर
2: है। तो आसपास के रहने वाले जो लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, टॉय इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, तो शायद उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी है कि बहुत सारे डिजाइन ऐसे तैयार हैं और
1: जो मार्केट में आने के लिए तैयार
2: है, फील्ड में टेस्ट कर लिया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजाइन बनाया, गेम बनाकर उसको टेस्ट भी किया गया है। तो मुझे लगता है अगर उसमें से कोई भी ऐसे लोग हैं जो उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, तो जरूर हमारे माध्यम से अगर सुन रहे हैं तो आपसे संपर्क करेंगे।
1: सेकेंडली सर, आफ्टर टॉय, जो ये मेरा दोनों से है आपसे, कि हमने स्टार्टअप पे थोड़ी बात करी, अभी हमने थोड़ी टॉय इंडस्ट्री पे उस पर बात करी। अब डिजाइन का इंडस्ट्री जो हार्डकोर इंडस्ट्री है, जैसे गवर्नमेंट का हमारा दूसरा मोटिव भी है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है और हम चाहते हैं कि नए नए डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया में आए, इंडिया में ही नई मशीनें बने, कोई हमें किसी भी चीज के लिए शायद बाहर आउटसोर्स ना करना पड़े। तो डिजाइन सर उसमें कैसा है, अभी काम कर रहा है, आप उसमें कुछ चेंज देख पा रहे हैं, पीपल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लोग अभी भी रेडी हैं कि हम बाहर से ही मशीनों को आउटसोर्स कर लें या फिर इंडिजीनियस मशीनों में फोकस है?
0: हमने एक नई शुरुआत की और एक नई प्रैक्टिस डेवलप की है जिसमें हमने यहाँ गौतम बुद्ध नगर में इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तकरीबन 500 कंपनियां हैं, तो उनके साथ हमने एसोसिएट किया और उनकी समस्याओं को पहले हमने समझा कि व्हाट एक्चुअली दे आर फेसिंग। तो उनकी प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर कंपनियां एमएसएमई सेक्टर की हैं, तो ना तो उनके पास हायर एंड टेक्नोलॉजी के लोग हैं, ना ही उनके पास हायर एंड मैनेजरियल स्किल्स के लोग हैं, क्योंकि कंपनी के पास बजट कम होता है, तो जो बजट है वो मेनली मशीन्स और लेबर पर ही यूटिलाइज होता है और इसी वजह से ये कंपनियां जो है लो कॉस्ट पर प्रोडक्शन कर पाती हैं। तो हमने यहां पर इस गैप को ऑब्जर्व किया और इस एसोसिएशन के साथ अपने स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम चलाया जिसका नाम हमने दिया कर कमलम। तो कर कमलम में हमने क्या किया कि कंपनी को ही कहा कि जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी है, उस पर आप हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे दीजिए और उस ट्रेनिंग के बाद उन स्टूडेंट्स को अपने यहां कुछ समय इंटर्नशिप का ऑप्शन दीजिए। जब वो इंटर्नशिप कर लेंगे तो उन स्टूडेंट्स को आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में भी पता होगा, प्रोसेस के बारे में भी पता होगा, व्हाट मटेरियल यू आर यूजिंग मटेरियल के बारे में भी पता होगा और कहां कहां कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है वो बच्चे जान पाएंगे। तो स्टेज थ्री में हमने उन बच्चों को फिर कंपनी के साथ अलाइन किया कि अब आप उसी प्रोडक्ट को दोबारा से रिडिफाइन करिए और इस बार जो डिफाइन करेंगे वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट के एंगल से डिफाइन करेंगे। सस्टेनेबिलिटी के लिए हमने उसमें बच्चों को पहले क्वाड्रपल बॉटम लाइन अप्रोच हमने बाकायदा सिखाया है, जिस अप्रोच में हम चार डायमेंशंस पर काम करते हैं, चार पीस पर काम करते हैं, जिसमें पहला पी जो है वो प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट कंपनी का मेंटेन रहना चाहिए। दूसरा हमने प्लेनेट, यानी कि कोई ऐसा वो ना हो जिससे पृथ्वी को नुकसान पहुंचे। तो आप जो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं उसमें कोई बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट हम यूज कर सकते हैं तो उसको आप कीजिए। हम मटेरियल को जो है कम यूज कर सकते हैं या ऐसा कोई मटेरियल यूज कर सकते हैं जो है जो समय के साथ अपने आप डिस्पोज ऑफ हो जाए, तो आप उस मटेरियल को यूज कर सकते हैं। तब फिर तीसरा हमने डायमेंशन लिया पीपल, कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मत बनाइए जिसमें, जैसे अभी सर ने बात की कि केमिकल हैजार्ड्स जो है आजकल काफी सारे मतलब इंडस्ट्री में जो है फर्टिलाइजर केमिकल्स वगैरह जो यूज हो रहे हैं वो आम आदमी की सेहत पर असर डाल रहे हैं। तो जो भी आप कंपनी का प्रोडक्ट जो है रिडिफाइन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में कोशिश करिए कि वो पीपल के लिए भी हार्मफुल ना हो। और चौथा द पर्पज शुड बी वेल डिफाइंड। तो ये चार पीस को लेकर हमने बच्चों को सिखाया कि अब आप उन्हीं कंपनियों को जो पहले से प्रोडक्शन कर रहे हैं और पहले से उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, उनके प्रोडक्ट्स को दोबारा से बनाइए और इस बार कोशिश करिए कि वो कंपनी का जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो

0: आपके साथ मिलकर बना रहे हैं वो किसी न किसी आईपीआर से प्रोटेक्टेड भी रहे, यानी कि कंपनी जो है वो उस प्रोडक्ट को अगर यूज कर रही है तो अगर उसकी लिमिटेशन ये है कि उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, छोटी कंपनी है और उसने आपके साथ मिलकर एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट में सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। तब उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो कंपनी जो है वो अपने उस प्रोडक्ट को जो उसका आईपीआर उसके पास है किसी दूसरी कंपनी के साथ रॉयल्टी पर शेयर कर सकती है। तो ये एक ऐसी विन विन सिचुएशन है जिसमें स्टूडेंट जो है पढ़ने के साथ साथ पैसा कमाना सीख रहे हैं, और क्योंकि उस समय बहुत क्रिएटिविटी होती है बच्चों के माइंड में, तो वो रोज नए नए डिजाइन सोचते हैं और वो कंपनी के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। तीसरी बात, जो थोड़ा सा खर्चा आता है जो है आईपीआर करने में, उसके लिए जो है जो हमने जो पेटेंट पर हमने कंसल्टेंट हायर किए हैं वो अपनी मदद करने को तैयार है कि अगर बच्चा स्टार्टअप कंपनी शुरू करता है तो गवर्नमेंट की सपोर्ट से हम कोई प्रोफेशनल फीस उसको चार्ज नहीं कर रहे हैं जो है, तो इस वजह से आसानी से आप आईपीआर पर भी जा सकते हैं, चाहे पेटेंट हो या डिजाइन हो। और जो कंपनियां हैं अगर वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो हमारा सोचना ये है कि जो सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग विशेष रूप से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर अपना नया कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम कम्पीट करना चाहते हैं तो हम कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी से नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट और चेंज होने वाली है। अभी आने वाले एक दो साल के अंदर जो है साइबर फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, यानी कि प्रोडक्ट का डिजाइन एक कंट्री में हो रहा होगा, वैलिडेशन दूसरे कंट्री में हो रहा होगा और मैन्युफैक्चरिंग तीसरे कंट्री में हो रही होगी। मैन्युफैक्चरिंग वहीं हो रही होगी जहां कंजम्पशन होना है। तो अभी जो डिजाइनर का रोल है वो बहुत वाइड होने वाला है। डिजाइनर को प्रोडक्शन जो डिफाइन करना पड़ेगा वो इस हिसाब से करना पड़ेगा कि दुनिया के किसी भी कोने में उसे रेप्लीकेट किया जा सके। तो ये बड़ा बदलाव का दौर है और यहाँ पर हर एक मतलब आदमी की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो डिजाइनर का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन न करके ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिजाइन करने पर आ जाती है।
1: राइट सर। तो सर अमित सर तो आईआईए के साथ पहले से काम कर रहे हैं, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ। हमने जब भी उनको सर अप्रोच किया है, मैंने खुद पर्सनल कैपेसिटी में, तो हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता था कि कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज कर सकते हैं, कुछ इजीमेंट कर सकते हैं। ये डिजाइन का सर से सुन के सर मुझे ऐसा लगा, और उन्होंने बोला कि एट दी एंड मैन्युफैक्चरिंग तो उधर ही होगी जहां पे कंजम्पशन होगी, दैट मींस इंडिया कि भाई हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आ सकती है, इजिली आउटसोर्स हो सकती है अगर हमारी टेक्नोलॉजी और डिजाइन दोनों पिलर्स जो ये है एक साथ एमएसएमई और एमएसएमई में काम करें।
0: इस क्वेश्चन को मैं पिक करना चाहूँ, देखिए मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। 2016 की बात है, एक बच्चा मेरा एक स्टूडेंट जो है वो एक उसने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काफी सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो हम किराए पर मंगाते हैं, है ना, विदेशों से किराए पर मंगाए जाते हैं और उसके लिए एक बड़ा हेफ्टी अमाउंट हम लोग रेंट पे करते हैं, तो क्यों ना इस इंडस्ट्री को टैप किया जाए और हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देश में बनाएं। तो उस बच्चे ने एक कंपनी के साथ मिलकर जो है अपना जो है स्टार्टअप शुरू किया, एंड बेसिकली ही वॉज डूइंग एज ए वेंडर। तो मैंने उसको कहा कि भाई आप जो है इसको बड़े पैमाने पर करिए, और फॉर्चुनेटली ऑन माई सजेशन दैट गाय शिफ्टेड टू आईआईएम लखनऊ एक्सटेंशन सेंटर एट नोएडा। तो वहां सर उसको जो है वो वर्क कल्चर मिला, और जो एफपीएम के कुछ स्कॉलर्स थे जो है उन्होंने भी उस कंपनी को थोड़ा गाइड किया, मेंटोर किया, एंड फाइनली इन ए वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम जब स्टार्टअप समिट हुआ तो उसमें उसके प्रोडक्ट को फर्स्ट प्राइज मिला, एंड दैट वॉज द गेम चेंजर। अभी वो कंपनी जो है 300 के करीब प्रोडक्ट्स बनाती है। इन 6 इयर्स ऑफ स्पैन दे हैव डेवलप्ड मोर देन 300 प्रोडक्ट्स, एंड आई फील वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट दे हैव स्टार्टेड देयर ब्रांच एज टेक्सास। बिकॉज द कंपनी द फाउंडर भुवनेश शर्मा ही शेयर्ड विद मी दैट सर इन इंडिया वी आर हैविंग 70,000 किलोमीटर्स लॉन्ग पाइपलाइंस, बट इन बोथ अमेरिका एंड कैनेडा द लेंथ ऑफ द पाइपलाइन इज मोर देन 150,000 किलोमीटर्स, सो वी हैव मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देयर, एंड टुडे वी हैव द कैपेबिलिटी टू कैटर बिकॉज वी हैव डेवलप्ड दैट लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल सेटिस्फेक्शन. अभी एक दो महीना पहले ही जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री का जो स्टार्टअप का समिट हुआ उसमें उनकी कंपनी को बेस्ट स्टार्टअप इन पेट्रोलियम सेक्टर का अवार्ड भी मिला है. और फॉर्चुनेटली आज उनकी कंपनी में ONGC भी का शेयर भी है, गेल का शेयर भी है, VDT पाइपलाइंस के नाम से जो कंपनी है. तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि जो कंपनी जिसको हमने थोड़ा सा सपोर्ट किया और एक निश एरिया में किया, पाइपलाइन इंडस्ट्री वॉज नॉट सपोज टू बी ए कॉमन एरिया फॉर एवरीवन, बट दैट गाय भुवनेश शर्मा वॉज हैविंग एक्सपीरियंस इन दैट एरिया विच ही यूटिलाइज्ड. एंड टूडे बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ही इज हैविंग सच ए बिग कैटलॉग ऑफ द प्रोडक्ट्स कि आज हम अपने देश में भी प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली जो विजन है हमारा स्टार्टअप्स के पीछे वो यहाँ मेटरलाइज होता दिख रहा है. तो मैं दूसरे स्टार्टअप जिनको भी मैं मेंटोर कर रहा हूँ उन सबको भी मैं यही कहता हूँ, डोंट कन्फाइन योरसेल्फ टू ए लोकल एरिया. जब तक आपके दिमाग में ये सोच नहीं आएगी कि मुझे इंटरनेशनली कम्पीट करना है, मुझे ग्लोबली अपने लिए स्पेस बनाना है, क्योंकि जो भी स्टार्टअप जिन्होंने नाम कमाया है वो सब वो है जिन्होंने ग्लोबली अपनी प्रेजेंस को शोकेस किया है. तो पहले दिन से ही हमको ये थॉट प्रोसेस भी बनाना पड़ेगा कि हम टाइम स्पेन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टाइम के साथ 5 साल में 10 साल में हम कितने साल में इंटरनेशनली अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर पाए.
1: सर सेम क्वेश्चन आपके पास ले जाऊंगा, बस एक ऐड और उसमें कर रहा हूं कि इसमें थोड़ा इसके चैलेंजेस के बारे में भी अगर बता पाए कि ये जो डिजाइन और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कराना है मैन्युफैक्चरिंग ऐसे में के लिए इसके कुछ अर्ली चैलेंजेस हो जिसको हमें सॉल्व करने.
2: जरूर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा. लगता है एक छोटा सा ब्रेक हम हमारे सुनो शारदा के श्रोताओं के लिए लेते हैं.
1: श्योर सर,
2: फिर हम जल्दी इस चर्चा के ऊपर वापस आएंगे.
1: श्योर सर. तो सभी का दोबारा वेलकम. और अभी लास्ट क्वेश्चन हम पुट कर रहे थे अमित सर से. सो जो डिजाइन चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी के बीच में, और जो चैलेंजेस हमें इस इंटीग्रेशन डिजाइन और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेशन करने के लिए आगे आ सकते हैं, उस चैलेंजेस से कुछ हमें फेस टू फेस करा सके बच्चों को कि पता लगे कि क्या क्या आगे फ्यूचर में हो सकते हैं.
2: डिजाइन और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके अगर हम फाइनली प्रोडक्ट तक जाने की बात अगर हम करें तो वहां पर फिर थोड़ा सा एक वाइडर हमें एक एस्पेक्ट देखना है जो डिजाइन थिंकिंग जिसको बोला जाता है. तो डिजाइन थिंकिंग एक कॉन्सेप्ट ऐसा आता है, वैसे तो जो थ्योरी में पढ़ाया जाता है सिलेबस में भी बहुत लोग पढ़ते हैं, डिजाइन वाले लोग भी पढ़ते हैं, कि एक 5-step प्रोसेस है जहां पर आपने कुछ कॉन्सेप्ट आइडिया से स्टार्ट किया और फिर अल्टीमेटली करते करते करते फाइनल पूरा प्रोडक्ट आपने बनाया. तो वो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के अंदर जब कोई भी स्टार्टअप जाएगा तो वहां पर उसे समझ में आएगा कि मैं जो भी बनाने जा रहा हूं वो क्यों बनाने जा रहा हूं, किसके लिए बनाने जा रहा हूं, और उसके हिसाब से फिर उसको वो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना है. तो अगर आप टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन की बात करेंगे प्रोडक्ट के अंदर डिजाइन से शुरू करते हुए, तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस एक ऐसी चीज है जिसमें हर एक स्टार्टअप को जरूर सोचना चाहिए और उसकी नॉलेज उनको होनी चाहिए. तो वहीं से उन्हें समझ में आएगा कि मेरा जो एंड यूजर है, जो भी कस्टमर है, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी वो प्रॉब्लम एरियाज क्या है जिसके ऊपर उन्होंने स्टार्टअप पूरा शुरू किया है, और उस प्रॉब्लम एरिया के हिसाब से, उस यूजर के हिसाब से ही हम अपना पूरा प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे. ऐसा ना हो कि मैंने अपने प्रोडक्ट के अंदर इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी बना लगा दी कि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा चली गई और मेरा जो एंड यूजर या कस्टमर है वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, या मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दी जो यूज करने में बहुत डिफिकल्ट है, तो एक जो हम यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट या सर्विस की बात करते हैं वो वहां पे फुलफिल नहीं हो पा रहा है. तो इसके इस हिसाब से और ये सारी जब हम मैपिंग करते हैं तो इसी को कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट मार्केट फिट की बात हम करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट मैं बनाने जा रहा हूं, जब मैं डिजाइन फेज से ही ये सारी चीजें लेके चलूंगा कि अल्टीमेटली वो एक प्रोडक्ट मार्केट फिट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी उसके यूजर्स हैं कस्टमर्स हैं क्या वो उसको कंफर्टेबली अफोर्ड कर पा रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं, आफ्टर सेल सपोर्ट आपको क्या देना है, कहीं वहां पर मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर ली है जिसका मैं बाद में सपोर्ट ही नहीं दे पा रहा हूं, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है उसको कोई रिपेयर करना है ठीक करना है वो सपोर्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज आ जाता है. तो कितने चीजें ऐसी हैं जहां पर हम उसको एक कम कॉस्ट के अंदर आफ्टर सेल सर्विस भी दे पाए, कोई भी यूजर को अगर कोई आपका प्रोडक्ट यूज करने में प्रॉब्लम आती है चाहे वो एक होम यूजर है या वो एक इंडस्ट्री में आपने कोई मशीन सप्लाई की, अगर आप उसको ये बोलते हो कि प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये पूरा वापस भेजो हम ठीक करके आपको दोबारा देंगे या उसकी इतनी कॉस्ट लगेगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं ना तो वो आपका यूजर सेटिस्फाई होगा और ओवरऑल जो भी बिजनेस है जो स्टार्टअप है उसके बिजनेस को भी वो अफेक्ट करेगा. तो ये टेक्नोलॉजी जरूर हमें देखना पड़ेगा.
0: मुझे ऐड करना चाहूंगा कि बेसिकली जो अमित सर ने बात की जो है तो आजकल स्टार्टअप जितने भी हैं उनको ये मेथोडोलॉजी समझना पड़ेगा और इसको हम कहते हैं लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी। मीन्स जैसे सर ने कहा कि हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो यूजर्स के लिए कितना यूजेबल है। अब कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट जो होता है वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे होता है लेकिन वक्त से पहले हम उसे लॉन्च कर देते हैं, उसके लिए मार्केट प्रॉपरली डेवलप नहीं होता और प्रोडक्ट फेल कर जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि प्रोडक्ट इसलिए फेल कर गया कि वो वक्त से पहले बनाए। दूसरी बार कई बार क्या होता है कि हम जैसे जो प्रोडक्ट हमारे दिमाग में आया हमने उस प्रोडक्ट को डेवलप किया, बाद में हमको पता चला जैसे सर ने बताया कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, कस्टमर की एस्पिरेशन कुछ और थी। तो अभी एक कंसेप्ट जो है वो जो हमको सबको सीखना पड़ेगा दैट इज द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ना मिनिमम वैल्यू प्रोपोजिशन के हिसाब से हमको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट आज जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़े वाइडली यूज हो रहा है। अब आप देखिए कि एक कार आती है मार्केट में जो है और उस कार के आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि 27 वेरिएंट्स अवेलेबल है सेम कार के जो है, और जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो एक्स प्राइस से 2x प्राइस तक है। तो द सेम कार इज बीइंग ऑफर्ड विद मल्टीपल ऑप्शंस। तो जैसे सर ने कहा कि उसकी यूजेबिलिटी के हिसाब से हम उसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करते जा रहे हैं या जो डिजाइनर का पार्ट है, जैसे अभी तक आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे अभी हम डिजाइनर की बात कर रहे हैं, तो जो डिजाइनर है कार में डिजाइनर्स आर प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल दीस डेज, क्योंकि कार में अब जैसे डैशबोर्ड है तो प्रीवियस डेज में यह था कि डैशबोर्ड जो है इंजेक्शन मोल्डिंग से बन के आते थे। अभी क्या हो गया कि जितनी प्रीमियम सेगमेंट कार्स हैं उसमें डैशबोर्ड आपकी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग जो है 3D प्रिंटिंग से बनाया जाता है। तो हियर द डिजाइनर्स प्लेज ए वेरी वाइटल रोल कि हमको जो भी कस्टमर की एस्पिरेशंस हैं उनको कैसे फिट करना है उस कार के अंदर। तो जो कार है उसमें न केवल अब टेक्नोलॉजिकल फीचर्स का वो रह गया है बल्कि कंफर्ट जोन के हिसाब से, इर्गोनॉमिकल फैक्टर्स के हिसाब से, यूजेबिलिटी के हिसाब से, अलग अलग प्रोफेशनल्स जो कार को यूज कर रहे हैं उनके प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए कार्स के इंटीरियर को रिडिफाइन किया जा रहा है। और यहां पर जो रोल है वो डिजाइनर का रोल है। ये अलग बात है कि जितने पैसे में हमको उसको डिफाइन करना है जितना उसका बजट है उसको हमको रिवर्स इंजीनियर करते हुए यूजर सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, क्योंकि अभी जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है उसमें इस चीज पर बहुत जोर है कि यूजर एक्सपीरियंस शुड बी एक्सीलेंट। सो बाय यूजिंग द लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी न्यू स्टार्टअप कैन पिक अप द मार्केट इन एनी सेगमेंट बाय कंसिडरिंग दीज फीचर्स। जैसा अभी सिंगल सर ने बताया कि कंज्यूमर को ध्यान में रख के बनाना, अगर डिजाइन मेथोडोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, डिजाइन थिंकिंग आप यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड हैव टू एम्पैथाइज विद द कस्टमर। तो ये एक बेसिक नीड बन गया है आज की तारीख में जिसको सभी को फॉलो करना
2: बिल्कुल। और ये टेक्नोलॉजी एम्बेड करना है, सर ने बिल्कुल सही कहा कि वेरिएंट्स बहुत सारे आपके प्रोडक्ट के हो सकते हैं और लीन स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट लेके बिल्कुल तो आप बहुत सही आपने बात ये बताई, बहुत अच्छा आपने टर्म यूज किया कि लीन स्टार्टअप लेके आपको चलना पड़ेगा। अगर आपके टेक्नोलॉजी में जो भी प्रोडक्ट आप फाइनली बनाना चाहते हैं उसमें हो सकता है 10 अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हो, तो कहां पर कितनी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने के बाद वो मेरा MVP मार्केट में निकल के आ जाएगा और मुझे एक यूजर एक्सपीरियंस और एक फीडबैक कस्टमर से मिल जाएगा, तो वो उसको समझना बहुत जरूरी है। और जो डिजाइनर है उसको ये ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि आज मैंने एक डिजाइन बना दिया, मेरा एमबीबी के अंदर 4 फीचर्स हैं, लेकिन 2 साल के बाद जब मैं इसके एडवांस वर्जन बनाऊंगा या जब मेरे इसके 10 वेरिएंट आ जाएंगे तो ऐसा ना हो कि मुझे वो पूरा रीडिजाइन करना पड़े। तो वो सारी टेक्नोलॉजी जो मुझे अपने आने वाले वर्जन के अंदर लेके आनी है, जो मुझे नए फीचर्स देने हैं या मुझे वेरिएबल फीचर्स देने हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस डिजाइन के अंदर फिट होने चाहिए। तो ये डिजाइनर को एक समझना बहुत जरूरी है और जितना जल्दी उस चीज को समझ लेंगे और उसी हिसाब से स्टार्टिंग से वो इस टाइप का डिजाइन बना के चलेंगे तो वो उनकी आने वाली प्रॉब्लम्स को आसान करेगा और आगे के कॉस्ट रिडक्शन में भी उनको हेल्प करेगा। तो ये वेट ना करें कि मैं 10 चीजें एक साथ लेकर फिर उसको मार्केट में लेकर जाऊंगा। तो लीन स्टार्टअप MVP लेकर एक मिनिमम सेट ऑफ फीचर स्पेसिफिकेशन के साथ उसको मार्केट में लेकर जाएं और देखें वो कस्टमर का, यूजर का क्या उसका रिस्पांस है, कैसा फीडबैक है और उसके हिसाब से उसको अपग्रेड करते चले जाएंगे। लेकिन डिजाइनर को सारी चीजें एक साथ माइंड में रखनी पड़ेंगी, उसको एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलना पड़ेगा।
0: सर
1: सर, जैसा कि हम लोग शो से पहले बात कर रहे थे, सर बता रहे थे कि ज्यादा इनोवेशन पे फोकस करके थोड़ा इनोवेशन और थोड़ा इंक्रीमेंटल होके भी ज्यादा वैरायटी कस्टमर्स के लिए बनाई जा सकती है, उनको ज्यादा ऑप्शन दिए जा सकते हैं।
2: बहुत सारी चीजें आप इंक्रीमेंटल इनोवेशन से कर सकते हैं, आप एक मार्केट में अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं,
1: खास करके नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जहां से हम बिलोंग करते हैं। और हमने देखा है कि हम लोग सॉफ्टवेयर कम और हम लोग हार्डवेयर प्रोडक्ट बेस्ड एमएसएमई एसएमई ज्यादा बेस्ड है, और हमारे यहाँ भी टैलेंट वही निकलता है जो सॉफ्टवेयर कम बनाता है और हार्डकोर प्रोडक्ट ज्यादा बनाते हैं। और अगर ये दो चीजें लोग अगर इस शो के दौरान जो लोग ज्यादा बात को समझना स्टार्ट करें कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की जो शक्ल है वो पूरी बदल सकते हैं अगर हम एक अच्छे डिजाइन और एक टेक्नोलॉजी का अच्छा मिश्रण कर सके। तो सर लॉन्ग दोनों से ही आप दोनों से ही लास्ट सवाल है मेरा कि इसका आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसा देख रहे हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पे डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप होम्स हर जगह पे इफेक्ट कर रहा है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए है या फिर सब ट्रेडिशनल डिजाइन के लिए, अभी इंडस्ट्रीज को भी टच कर रहा है, पहले भी टच कर रहा था शायद हमें नहीं पता था। जैसे सर ने अभी ऑटोमोबाइल का एक एग्जांपल दिया, उससे मुझे काफी क्लियर हुआ कि कैसे हाउ द डिजाइन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल विद लिमिटेड टेक्नोलॉजी।
0: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए भारत में कहीं ना कहीं हमारी एक जो सोच है वो वर्तमान में जीने की है, और बचपन से हमको यही सिखाया जाता है कि भविष्य की चिंता छोड़ो, भूत का पश्चाताप न करो, वर्तमान में जियो। तो हमारी जो सोच है वो बचपन से इस तरीके से डेवलप हुई है कि हम वर्तमान में ही जीना चाहते हैं, और इसका नुकसान जो है वो इंडस्ट्री को होता है कि हमारा जो युवा है वो जिस इंडस्ट्री में काम करना चाहता है या जो प्रोडक्ट वो डेवलप करना चाहता है वो वर्तमान जरूरत के हिसाब से करना चाहता है। जैसे अभी डॉक्टर अमित ने बात की जो है कि आप आने वाले 2 साल के बाद अपने प्रोडक्ट में क्या इंटीग्रेशन करेंगे वो आज आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आप रोज नया प्रोडक्ट नहीं डिफाइन करेंगे, आप उसी प्रोडक्ट को रिडिफाइन करेंगे। तो यहां पर जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि अभी हम इंडस्ट्री 4.0 के एरा में हैं, और इस एरा में हमने करीबन 9 टेक्नोलॉजीज को पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट किया, लेकिन अभी भारत में हम अगर देखें तो हम काफी पीछे खड़े हैं। हमारी इंडस्ट्रीज में अभी भी काफी रेजिस्टेंस है, और अभी भी हम जो है लेबर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज क्रिएट करने के विषय में ही सोचते हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी अगर हमको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो हमें टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन करना ही पड़ेगा। जैसे क्लाउड है तो अब वी कांट इग्नोर क्लाउड टूडे, चाहे वो जैसे अभी एम्फेथाइज करने की बात चल रही थी, तो एम्फेथाइज करने के लिए अभी कंपनियां एआई का प्रयोग करके बेसिकली वो डेटा कलेक्ट कर रही है कि कस्टमर को क्या पसंद है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे देश में हम उस लेवल पर उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें यही नहीं पता चल रहा है कि मार्केट में जो चेंज आ रहा है, जैसे फाइनेंशियल्स चेंज हो रहे हैं लोगों के, तो उनकी एस्पिरेशंस कैसे बदल रही हैं, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहते हैं। तो अभी एआई के माध्यम से काफी सारी इंडस्ट्रीज जो है इसको कर रही है, तो ये डिजाइनर्स के लिए भी डिजिटल वर्ल्ड जो है इट इज एन अपॉर्चुनिटी दैट दे शुड ट्राई टू कलेक्ट द बेस्ट फीडबैक व्हाट द एस्पिरेशन इज। देन IoT जैसे अभी काफी बहुत ही कॉमन हो गया है अब जो है, लेकिन अभी हमारे देश में IoT का एप्लीकेशन उतना ज्यादा नहीं है। अभी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो बहुत ही मतलब बेसिक अभी हमने यूसेज शुरू किए हैं,
2: वो इतना डेवलप नहीं हो पाया कि हर कोई इसे इस्तेमाल कर पाए।
0: तो अभी हमको अपने जो प्रोडक्ट डिजाइन हम कर रहे हैं, चाहे वो जैसे अभी देश में जो है एक नई पॉलिसी आई है, न्यू जियो स्पेटियल पॉलिसी, तो पूरे भारत को हम लोग डिजिटली मॉनिटर करने वाले हैं। जमीन का एक एक इंच टुकड़ा जो है वो डिजिटली मैप होने वाला है, और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज बननी है। बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी डोंट हैव मेनी कंपनीज दोज हु आर वर्किंग इन दीज एरियाज। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं वो सिविल इंजीनियरिंग का मतलब आज भी सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करना समझते हैं, ना तो वो नए मेटेरियल्स डिजाइन करने में आगे आते हैं और ना ही नई टेक्नोलॉजी। अब जैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का अभी तक जो है हम जो यूज कर रहे थे वो केवल कुछ प्लास्टिक कंपोनेंट्स डेवलप करने के लिए कर रहे थे, अभी पूरे वर्ल्ड में बहुत वाइडली जो है मेटल पार्ट्स के लिए यूज होने लगा है। लेकिन चाइना में ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड टू मेक बिल्डिंग्स यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारे देश में भी आने वाले टाइम में ये होगा, लेकिन यहां पर ये चीज समझने की है कि हम केवल बिल्डिंग्स यूज करने के लिए मतलब बनाना चाहते हैं या हम वो मशीनें डेवलप करना चाहते हैं जो प्रयोग की जाएंगी। तो अभी हमको अगर भारत को विश्वगुरु वाकई बनाना है तो हमें अपने कर्तव्यों को ठीक से समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को आने वाले 10 साल के बाद क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हुए देखना चाहते हैं, क्या बने हुए प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं, यानी कि हम ड्राइवर्स बनाना चाहते हैं या कार बनाना चाहते हैं। तो अगर हमें अपने बच्चों को कार बनाना सिखाना है तो तो हमें उन्हें मटेरियल्स भी सिखाना पड़ेगा, प्रोसेस भी सिखाना पड़ेगा, और उसकी हर कंपोनेंट की यूटिलिटी कैसे है और उनकी कनेक्टिविटी कैसे है, ये सब सिखाना पड़ेगा, चाहे वो डिजाइनर के पार्ट पर हो चाहे टेक्नोलॉजी के पार्ट पर हो। क्योंकि अभी क्या है कि अभी दोनों अलग अलग नहीं चल सकते। अभी जो काफी सारे टेक्नोलॉजी कंपोनेंट हैं, दे आर इन्फ्यूज्ड इनटू द डिजाइन ऑफ द कंपोनेंट। मतलब हमको प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जो देखने में बिल्कुल साफ सुथरा हो। तो बहुत सारे, जैसे कहीं पहले वायरिंग्स दिखाई देती थी, आजकल आपको कहीं कोई वायरिंग दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जब हम बिल्डिंग डिजाइन कर रहे होते हैं तो बिल्डिंग डिजाइन करते समय हम पूरे वायरिंग कंड्यूट्स, पाइपलाइन कंड्यूट्स, सारी कंड्यूट्स, जो जैसे अभी हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करना है तो उसके कंड्यूट्स भी हम पहले से डिफाइन करके रखते हैं। तो ऐसे ही हमको ये समझना और समझाना पड़ेगा अपने बच्चों को जो है कि आने वाले 10 साल में IoT हर जगह होगा, हर डेटा क्लाउड पर होगा,

0: हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी हमारी जरूरत बन जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया साइबर फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो एक रियलिटी होंगे। हम हर आदमी के हिसाब से कस्टमाइज प्रोडक्ट बना रहे होंगे और फिर भी मास प्रोडक्शन कर रहे होंगे। और तीसरी बात यह कि अगर हमारे पास डिमांड जो है वो बॉम्बे से आ रही है तो हम बॉम्बे में ही वेंडर ऐसा तलाशेंगे जो है जो बॉम्बे में ही बस मैन्युफैक्चर कर दे। डिजाइनर जैसे अभी आपने कहा हमारा फैशन डिजाइनर यहां बैठ के डिजाइन करेगा, लेकिन वो इस तरीके से डिजाइन करेगा जिसमें मशीन्स भी स्पेसिफाइड हैं, मटेरियल भी स्पेसिफाइड है और प्रोसेस भी वेल स्पेसिफाइड है, तो दैट कैन बी रेप्लिकेटेड एट एनी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। हमारे बच्चों को भी आने वाले टाइम में जो अपने स्टार्टअप्स खड़े करने हैं उनके प्रोडक्ट्स को इसी प्रकार से प्लान करना पड़ेगा। ये तरीका हम सोचें कि अभी हम यहां पर एक पर्टिकुलर प्लेस पर सपोज करिए गौतम बुद्ध नगर इंडस्ट्रियल एरिया में हम प्रोडक्शन करते हैं और फिर सोचें कि हम उस माल को हम एक्सपोर्ट करेंगे न्यूयॉर्क में जो है, तो आज की तारीख में एक्सपोर्ट में बहुत सारे कॉस्ट वैसे इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, तो ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, तो दूसरे काफी सारे टैक्सेशन बढ़ जा रहे हैं, तो इट इज ए बेटर वे कि वो जो हमारा यहाँ का स्टार्टअप है वो वहां किसी स्टार्टअप या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर ले, डिजाइन यहां से कर ले, लेकिन उस डिजाइन का आईपीआर जो है वो होना चाहिए और उसके बाद उस प्रोडक्ट को किसी भी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके वहां प्रोड्यूस करें। ये मॉडल अगर आप देखें तो अभी डिफेंस सेक्टर में हमारे देश में काफी यूज हो रहा है, बट आई एम वेरी सॉरी टू से हमारे अपने देश की इंडिजिनियस कंपनियां विदेशों में जाकर कहीं कोलैबोरेट नहीं कर पा रही हैं। तो अभी ये क्योंकि इंसेप्शन स्टेट में है, धीरे धीरे हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये देखने को मिले। अभी हमारे देश में जैसे ड्रोन सेक्टर काफी इंप्रूव कर रहा है, काफी सारे बच्चे ड्रोन सेक्टर में जो है अपना स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं, और अभी क्योंकि इसमें बहुत पॉलिसीज नहीं वेल डिफाइंड थी इसलिए मतलब प्रॉपर रोड मैप नहीं था, अब नई पॉलिसी आ गई है ये स्पेटिकल पॉलिसी, तो अब बच्चों को ये पता होगा कि उनको क्या क्या लाइसेंसेस लेने होंगे और क्या क्या प्रोडक्शन वो कर सकते हैं, क्या चीजें लीगली अलाउड हैं हमारे देश में क्या नहीं अलाउड हैं। देन अगर उनके पास आईपीआर प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं तो उन प्रोडक्ट्स को बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो खरीदना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ये समझें कि मार्केट केवल अपना देश नहीं है, विश्व के डिफरेंट कॉर्नर्स में हमारे लिए मार्केट एग्जिस्ट करता है, तब हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये जो एसोसिएशन या कोलैबोरेशन की हम बात कर रहे हैं ये केवल अपने देश में या लोकल लेवल तक ही सीमित ना रहे और इसको जितनी जल्दी हो सके हमें जो है ग्लोबल लेवल पर ले जाना पड़ेगा, बिकॉज द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग और जैसे हम कहते हैं द ग्लोब इज नाउ ए विलेज, तो हमको भी ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हमारी इंडस्ट्री जो यहां बैठी हुई है जो स्टार्टअप है उसको कैसे हम ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं और वहां जो इंडस्ट्री है उसके पास क्या फीचर्स हैं या क्या टेक्नोलॉजीज है जो हम यहां से वहां रेप्लिकेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन वहां कराकर वहां कैटर कर सकते हैं। तो ये स्टार्टअप्स के लिए एक नई तरीके का डायमेंशनल शिफ्ट होगा जो अगले कुछ सालों में एक रोड मैप की तरह काम करेगा और सभी सेक्टर्स में एम्पल अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, चाहे वो फिल्म एंड डिजाइन का सेक्टर हो, चाहे वो सिविल से रिलेवेंट सेक्टर्स हों, चाहे प्रोडक्शन से रिलेवेंट सेक्टर्स हों, तो एवरीवेयर द अपॉर्चुनिटी इज एबंडेंटली अवेलेबल। और जैसे मैंने डिजिटल ट्विनिंग की बात करी, पूरा ग्लोब अभी डिजिटल ट्विनिंग का वेट कर रहा है क्योंकि अभी कुछ ही शहर हैं पूरे विश्व के जो है जो डिजिटल ट्विन के माध्यम से डेवलप किए गए हैं, और अगर हम आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे, नए हमारे स्टार्टअप नहीं आएंगे या पुरानी हमारी जो कंपनियां हैं वो बड़े पैमाने पर इसको अडॉप्ट नहीं करेंगी, तो फिर क्या होगा कि हम एक बार जो है शहर को डेवलप करेंगे फिर डिसमेंटल करेंगे और फिर डेवलप करेंगे, तो ये पाइपलाइंस का जो पूरा जाल बिछा हुआ है पूरे शहर में वो बार बार हमको जो है वो करना पड़ेगा, उससे सिक्योरिटी इश्यूज भी क्रिएट होंगे। तो अब ये समय की दरकार है कि हम अगले 20 साल के हिसाब से रोड मैप बनाएं और उस रोड मैप को हमको पूरा करने के लिए किन टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी, किस तरह के डिजाइनर्स की जरूरत पड़ेगी, किस तरह के आर्किटेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, किस तरह के प्लानर्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे आपने लैंडस्केप प्लानिंग की बात करी, तो दे आर ऑल टू बी इनकॉर्पोरेटेड वेल इन एडवांस सो दैट The company should have a futuristic map of 10-20
1: years. Right, sir. Sir, same question आपकी तरफ ले जाते हुए मैं एक add करना इसमें जाऊंगा long term impact के बारे में कि हम जानते हैं शारदा के कुछ startups हैं जो इंडिया और अफ्रीका के अंदर dual business कर रहे हैं, उन्होंने वहां की companies के साथ collaborate किया है और वो दोनों technology exchange पे काम कर रहे हैं, तो सेम जैसे हमारे यहाँ सर अभी स्मार्ट सिटीज चल रही है, अभी हमने काफी सारी अपॉर्चुनिटी करेगी जहाँ पे डिजाइन और टेक्नोलॉजी मिलके होम्स तो डिजाइन करती थी पहले और आईओटी चीज में थी, बट अभी स्मार्ट सिटीज है, फिर रूरल डिजाइनिंग है और मतलब सिटी डिजाइनिंग है, काफी सारी चीजें है उसके अंदर. तो आपको लग रहा है ऐसे ही कुछ स्टार्टअप्स भी वहां पे मूव कर सकते हैं ऐसे विदेशों के अंदर यहाँ पे बच्चे टीम बना के?
2: नहीं, बिल्कुल ऐसा है. और जैसे आपने कहा कि शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जो दूसरे कंट्री से भी यहाँ पे आके पढ़ते हैं. और जो एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट है वो सभी के लिए है, चाहे वो कहीं का भी, अगर वो शारदा का स्टूडेंट है तो उनको सभी को सपोर्ट दिया जा रहा है. और इंटरनेशनल मार्केट का जैसे सर ने बोला कि अगर किसी स्टार्टअप को ग्रो करना है तो उसको अपनी मार्केट को बड़ा करना ही पड़ेगा. और जिस तरह से इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स इंक्रीज कर रहे हैं डे बाय डे, आज हम लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच गए हैं जो हमारे स्टार्टअप्स का रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स का काउंट है. तो उनको मार्केट तो उतना बड़ा चाहिए. अगर सभी ये सोचेंगे कि मैं अपने रीजन के अंदर या अपने सिटी में या अपने स्टेट में बैठकर ही मैं स्टार्टअप अपना या बिजनेस चला लूंगा, तो उसमें आने वाले टाइम में फिर कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स को असर करेगा. तो आपको अपनी बाउंड्री से बाहर निकलना ही पड़ेगा और एक ग्लोबल मार्केट में जाना है और उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी. और इसी डायरेक्शन में हमारे यहाँ पर भी स्टार्टअप्स काम करते हैं. तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर वहां की कंट्रीज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो समझते हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं या यहाँ के स्टार्टअप्स हैं शारदा के अपने भी और बाहर के स्टार्टअप भी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उनको एक डायरेक्ट इनपुट मिल जाता है कि अच्छा ये 15 कंट्रीज हैं जहां पर इस तरह के प्रोडक्ट्स की ये रिक्वायरमेंट है, वहां के लोगों की ये जरूरत है, ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो वहां इजीली अवेलेबल नहीं है, अगर हैं तो वो बाहर के कंट्रीज से इंपोर्ट किए जाते हैं. तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स को समझ के उसके हिसाब से फिर वो अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं और फिर जो दूसरे कंट्रीज के बच्चे जो यहाँ पर हैं उनके साथ मिलकर एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरह का एक बिजनेस सेटअप करके और वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जा रहे हैं. तो ये एक अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल मार्केट में जाने की एक ईजी मिल जाती है. एक तो आपको वहां की लोकल मार्केट के बारे में पता लग रहा है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, और दूसरा वहां पर आपको एक टीम मिल जाती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहां पर हैं, इनकी एक टीम वहां पर उनकी कंट्री में अवेलेबल है जो आपके बिजनेस को वहां सेटअप करने में हेल्प करेगी. वहां के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लॉज क्या है, उनकी जानकारी आपको इनके थ्रू इजीली मिल सकती है. देन इन सारी कंट्रीज के एम्बेसीज के साथ हम बहुत अच्छे हमारे रिलेशंस हैं, तो वहां से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशंस का भी एक एक्सेस मिल जाता है, उसका भी एक सपोर्ट हमें मिल जाता है. तो इस टाइप का एक ग्लोबल इकोसिस्टम बिल्ड करने की तरफ काम हो रहा है और इस डायरेक्शन में हमें जाना ही पड़ेगा. जैसे आज पूरा वर्ल्ड इंडिया को एक मार्केट की तरह देख रहा है और उसके साथ साथ एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह भी देख रहा है. अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की आज बात करें तो जैसे सर ने बोला कि जहां पर आपकी चीजें यूज हो रही हैं आप वहीं पर उसको मैन्युफैक्चर करो, तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल आज इंडिया है कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, चाहे वो मोबाइल फोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं और दूसरे डिजिटल डिवाइसेस हैं, उसका बहुत लार्ज स्केल पे कंजम्पशन इंडिया के अंदर हो रहा है. तो वो चीजें इंडिया के अंदर ही अगर मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाए तो उसके जो कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगी, टाइम बहुत आपका सेव होगा. आप एक कंट्री में चीज बना रहे हैं दूसरे कंट्री में उसे भेज रहे हैं तो वहां पर कहीं ना एक टाइम क्रिटिकल इशू आ जाते हैं कि अगर मुझे सामान आज चाहिए और किसी भी वजह से अगर वो डिले हो जाता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में है या कोई क्लियरेंस के अंदर है या मटेरियल की रिक्वायरमेंट की वजह से है, तो वो जो डिले है ये बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. तो इस डिले से की जो प्रॉब्लम है इससे भी वो एक इजी सोल्यूशन मिल जाएगा कि जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट आए वहीं पर वो मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाए. तो इस तरह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो इंडिया में डेवलप होगी तो वो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी. तो इंडियन इकोसिस्टम तो बिल्ड होगा ही होगा और जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कॉस्ट भी जरूर उसमें कम होगी जब वो लोकली यूज होगा, लोकली डेवलप होगा, मैन्युफैक्चर होगा. और सेम चीज हम दूसरे कंट्रीज के साथ भी कर रहे हैं कि जो यहां से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये डिजाइन यहां रेडी होकर और देन दूसरे कंट्री में जाकर जैसे भी सोलर के अंदर या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने सेटअप किया है कि यहां पर वो सारी उसकी डिजाइनिंग हो रही है, उसका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है एंड देन दूसरे कंट्री में जाकर वहां पर उसकी असेंबली किया एंड देन फिर वहीं उसे मार्केट किया और वहीं पर उसको लोकली एक सिस्टम ऐसा बिल्ड किया कि आफ्टर सेल सपोर्ट भी आप उसको वहीं उसी कंट्री के अंदर मिल जाए. आज जो एक मेजर प्रॉब्लम हम चाइना के साथ फेस करते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका खराब हो जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसे फेंक दो और दूसरा खरीद लो. तो ये प्रॉब्लम हम कहीं इस चीज को शुरू से हम लेकर चल रहे हैं कि यहां से जो भी स्टार्टअप निकलता है और अगर वो दूसरे कंट्री में जाके काम कर रहा है तो उस कंट्री में हम वहां पर ही सिस्टम बिल्ड कर दें कि उसका आफ्टर सेल सपोर्ट वहां पे दे पाए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आती है. इस तरह से ग्लोबल इकोसिस्टम बिल्ड करने की तरफ हम इसमें काम कर रहे हैं.
1: और जैसा आपने शुरुआत में बोला कि इंडिया को अभी लोग मार्केट की तरह भी देख रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह भी देख रहे हैं, तो ये जो लास्ट पॉइंट आपने बताया कि आफ्टर सर्विस हमारी रेपुटेशन कुछ ऐसी ना बन जाए कि हम से प्रोडक्ट बेच रहे हैं और फिर वो खराब हो जाते हैं और
2: ये नहीं होना चाहिए.
1: ये नहीं होना चाहिए. और तो आगे चलने से पहले अभी हम सोनू शारदा के लिसनर्स के लिए एक ब्रेक और लेते हैं और फिर इसके बाद इस सेशन को क्लोज करते हैं. सभी लिसनर्स का स्वागत है वापस, और इस सेशन को क्लोज करते हुए हम लोग क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहेंगे अपने दोनों ही गेस्ट से। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे लिसनर्स को कोई बुक, कोई मूवी या फिर कोई नॉलेजफुल डॉक्यूमेंट्री अगर सजेस्ट करना चाहे बाद में पढ़ने के लिए या सुनने के लिए, जिससे उनके इन विषयों के बारे में जिसमें हमने बात करी है थोड़ी नॉलेज और बढ़े। तो सर पहले आपसे शुरुआत करते हैं प्लीज।
0: हाँ, एक किताब जरूर मैं सजेस्ट करूंगा सभी को पढ़ने के लिए, लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी विच इज रिटन बाय इर्क राइस।
1: ओके सर,
0: तो जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं जो है उनको ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए, और जो बच्चे अभी अपना प्लान कर रहे हैं जो है बिजनेस सेगमेंट को समझना चाहते हैं उनको भी ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए। और दूसरा डिजाइन मेथोडोलॉजी जो है, जैसे डिजाइन थिंकिंग की अभी हमने बात की या क्रिएटिव थिंकिंग की जैसे सर ने बात की, तो उसके लिए बहुत सारी अभी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हो गई हैं और उनकी फिलॉसफी में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको मास्टर करना पड़ेगा। कैसे ब्रेनस्टॉर्म करना है वो मेथोडोलॉजी सीखना पड़ेगा, जैसे लेस इज मोर, व्हाट इज लेस इज मोर मींस, तो ये हमको डिफरेंट मतलब अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस फिलॉसफी को डेवलप किया है उनकी जो अपनी वीडियोस हैं उनसे आप निकाल सकते हैं जो है कंसेप्ट को, कि मुझे जब प्रोडक्ट डिजाइन करना है तो उनमें किन किन बेसिक फीचर्स का यूज करना है, लास्ट 2% इज 200%, लेस इज मोर, तो ये कंसेप्ट जब तक आप सीखेंगे नहीं जो है तब तक आप अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली डिजाइन नहीं कर सकते। और जैसे मैंने इस बुक की बात की तो ये बुक एक ऐसे ऑथर ने लिखी है जो खुद जो है एक स्टार्टअप जिसने किया और वो फेल कर गया, देन ही रियलाइज कि फेलियर के रीजंस क्या हैं, देन इट्स ए वेरी गुड बुक जिसे आई हैव रिकमेंडेड टू मेनी स्टार्टअप्स, एंड आफ्टर रीडिंग द बुक दे रिवर्टेड बैक टू मी दैट इट वॉज वर्थ टू रीड।
1: सर सेम आपके लिए।
2: मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि बुक्स जैसे सर ने बताई दिया बहुत अच्छी बुक्स हैं, और हर एक स्टार्टअप को जिस भी फील्ड में वो काम कर रहा है उस फील्ड में जो लोग पहले कुछ सक्सेस स्टोरी बिल्ड कर चुके हैं तो उनकी बायोग्राफी या उनके एक्सपीरियंसेस को वो जरूर पढ़ें। तो ये बहुत हमने एक कॉमन चीज देखी है कि कभी कभी लोग इंस्पायर तो होते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो स्टार्टअप कैसे बना था। ये सबको दिखता है, आज दिखता है कि ये स्टार्टअप इतना बड़ा हो गया, ये यूनिकॉर्न बन गया, ये पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहां से शुरू किया था और क्या उन्होंने शुरू में चैलेंजेस फेस किए, कैसे उन्होंने अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा किया। और फिर से लीन स्टार्टअप जरूर मैं कहूंगा सबको समझना चाहिए कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। आप दो तीन लोगों की टीम हो, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड आपके पास हैं, तो आपको फाइनेंस की जानकारी भी थोड़ी सी होनी चाहिए, डिजाइन की जानकारी तो है ही, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं जो आपका डोमेन है उस डोमेन के बारे में भी आपको समझ होनी चाहिए, मार्केट की समझ आपको रखनी है, तो कैसे आपको ये टीम बनानी है और कैसे ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, यूनिकॉर्न फाउंडर्स हैं, इन लोगों ने कैसे टीम बिल्डिंग किया, कैसे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स को इन्होंने सेलेक्ट किया, एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग कैसे किया, तो ये सारी चीजें हैं जो जरूर आप इस चीज को जाने उसके बारे में पढ़ें। जिस भी फील्ड में आपका, जिस भी डोमेन में आपका स्टार्टअप है उसमें जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं आप उस सक्सेस स्टोरी को शुरू से देखें और उनकी जर्नी को थोड़ा सा स्टडी करें, उनके चैलेंजेस को आप देखें, बिकॉज एक कॉमन चीज ये कही जाती है जो मैं हमेशा सभी स्टार्टअप्स को और बच्चों को भी बताता हूं कि अपनी गलतियों से तो सभी सीख लेते हैं लेकिन हम दूसरों की गलतियों से सीखें तो शायद वो हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान कर देगा और हमारे सक्सेस के चांस को बहुत बढ़ा देगा। तो कुछ लोग जो ऑलरेडी गलतियां कर चुके हैं तो उन्होंने सीखा, उसी से हम भी बहुत पहले सीख सकते हैं बजाय इसके कि हम भी उसी गलती को दोहराएं। तो ये सक्सेस स्टोरी और उसकी जर्नी को पूरा स्टडी करने के ऊपर मैं जरूर एक मेन स्ट्रेस दूंगा, और डिजाइन थिंकिंग तो ऐसा पार्ट है जिसके बारे में हर एक एंटरप्रेन्योर को पता होना ही चाहिए।
3: तो सर आपने बिल्कुल सही बोला, लोग ज्यादातर सक्सेसफुल चीजें ज्यादा देखते हैं सामने वाले की और उसका स्ट्रगल, उसका फेलियर नहीं, उसके बढ़ते। हालांकि जब मैं यूट्यूब को छानता हूं तो मैं कई बार देखता हूं कि जितने भी हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं अभी तक से विदाउट नेमिंग देम, सबने अपने दोनों क्वेश्चंस बताए हैं, वो अवेलेबल है, वो अपनी सक्सेस भी बताते हैं, अपना फेलियर्स भी बताते हैं और अपना स्ट्रगल भी बताते हैं। बट एज एन यू नो एस्पायरिंग एम्बिशियस फर्स्ट टाइम फाउंडर हमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें सुनने की आदत होती है कि भाई कैसे जल्दी से ग्रो करके कितना नाम कमा लिया, बट जैसे सजेशन दिया कि हमें सब कुछ दोनों।
2: और ये ऐसा होता भी है, जैसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहां पर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया जाता है तो वो लोग भी मोटिवेट करने के लिए हमेशा एक अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर कहीं भी ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं तो आप जरूरी उनसे पूछिए कि चैलेंजेस क्या आए, प्रॉब्लम्स क्या आई और आपकी क्या मेथोडोलॉजी थी उसको सॉल्व करने की,
1: राइट सर,
2: सो दैट उसके हिसाब से आप पहले से प्लान करके चल पाए।
3: तो मुझे लग रहा है
2: ये भी बता रहा है कि कभी ऐसा होता है कि एक ऑडियंस ऐसी होती है, माहौल ऐसा होता है कि आपको सब मोटिवेट करना है, सारी पॉजिटिव चीजें ही बतानी है, तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें नहीं बता पाते हो। लेकिन स्टार्टअप को अपने लेवल पे भी समझना है कि मुझे कब का ऐसे मौका मिलेगा कि जहां वो जाकर मैं वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाऊं। अगर वो किसी बुक में नहीं लिखा है, किसी वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है, तो उनसे मिले और जानने की कोशिश करें कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया।
1: तो
2: वो अप्रोच, वो

0: जानना बहुत जरूरी
1: चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो बेसिकली स्टार्टअप्स की दुनिया है इसमें दो एंड्स हैं। एक एंड है जिसमें आप एक ऐसे प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें कोई काम नहीं कर रहा है और आप उसमें स्कोप पाते हैं। तो वर्ल्ड में जितने बड़े स्टार्टअप क्रिएट हुए हैं, जितने यूनिकॉर्न्स क्रिएट हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस डिसरप्शन को ही ऑब्जर्व किया है कि दूसरे लोग काम नहीं कर रहे, मैं स्ट्रगल करूंगा, जैसे भी करूंगा इसे खड़ा करूंगा, एंड दे गॉट द सक्सेस। जब उसकी सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो गई तो उसको रेप्लीकेट करने के लिए बहुत सारे लोग मातहन में आए, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि वो जो बाद में देखकर आए जो है उनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में टिक ही नहीं पाते, क्योंकि तब तक एक प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड बन चुका होता है। दूसरी तरफ एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो उस वहां पर आप प्रोडक्ट को थोड़ा सा भी अगर चेंज करते हैं, चाहे वो डिजाइन के एस्पेक्ट से हो, चाहे वो कॉस्ट सेविंग के एस्पेक्ट से हो, चाहे फीचर्स के हिसाब से हो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, तो आप अपने लिए मार्केट स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। सो दे आर टू डिफरेंट एंड्स, और क्योंकि स्टार्टअप्स पूरे उसमें कहीं भी हो सकता है, पूरी स्पेस में कहीं भी हो सकता है, तो कोई एक मेथोडोलॉजी सब पर लागू नहीं हो सकती। और ज्यादातर स्टार्टअप्स के साथ जो सक्सेस स्टोरी है वो इसी बात पर डिपेंड करती है, जैसा सर ने कहा कि यू शुड क्रिएट ए टीम, सो द टीम शुड कंसीडर द पीपल फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स, एंड नाउ इट्स ए हाई टाइम व्हेन वी शुड रियलाइज दैट व्हेन वी आर कोलैबोरेटिंग एट द इंस्टीट्यूट लेवल और एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, वी शुड पिक द पीपल फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स सो दैट वी आर नॉट लैगिंग बिहाइंड एट ए पर्टिकुलर सेगमेंट। अगर डिजाइनर की जरूरत है तो डिजाइनर हमारे पास होना चाहिए, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन की जरूरत है तो टेक्नोलॉजी, जैसे सर ने कहा कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत वो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास अब देश में कैपेबिलिटी अवेलेबल है, तो वी कैन फाइंड द पीपल फ्रॉम आवर ओन स्पेस कि वो डिजाइन कैसे होगा और मैन्युफैक्चर कैसे होगा। देन कम्स द यूजेबिलिटी थ्रू सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में इंडिया क्योंकि लीडिंग कंट्री रहा है, हमारे पास काफी प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं और दीज डेज द टेक्नोलॉजी इज वेरी इजिली अवेलेबल टू डिस्कस एंड यूज। तो जो टीम हम डेवलप कर रहे हैं, दे टीम शुड बी इन सच ए वे दैट दे आर ए होलिस्टिक सॉल्यूशन। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट वी आर डेवलपिंग फॉर वन प्रोडक्ट एंड इन दैट वन प्रोडक्ट वी मे फाइंड 10 स्टार्टअप्स वर्किंग टुगेदर फॉर ए कंप्लीट प्रोडक्ट। सो दिस मेथोडोलॉजी शुड बी इवॉल्व दैट ये जरूरी नहीं है कि एक स्टार्टअप है तो वो एक एंड प्रोडक्ट ही बनाकर दे रहा है। देयर मे बी 10 स्टार्टअप्स जो अपना अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी डोमेन में कर रहा है, डिजाइनर्स अपने डोमेन में काम कर रहा है, देयर मे बी अन स्टार्टअप कंपनी इन द डिजाइन डोमेन जो UI UX पर काम कर रही है या ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम कर रही है, और उधर टेक्नोलॉजी वाली कंपनी हो सकता है जो IoT पर काम कर रही है, उधर तीसरी कंपनी IT सेक्टर से हो सकती है जो IT सेक्टर का काम कर रही है। तो अलग अलग स्टार्टअप कंपनीज जो है दे कैन मेक ए कंसोर्टियम एंड दैट कंसोर्टियम कैन इवॉल्व विद ए बिग प्रोडक्ट सॉल्यूशंस। तो ये हाई टाइम है जो है जब हमें अपने देश को अगले 20 साल के लिए प्लान करना पड़ेगा, और इन स्टार्टअप्स के लिए भी ये जरूरी है जो है कि वो डिफरेंट फोरम्स पर आकर अपनी अपनी कैपेबिलिटीज को शेयर करें सो दैट दे कैन हैव ए बिग ड्रीम एंड कैन मेक द कंट्री विश्व गुरु।
2: तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन क्लोज करते हैं, और मैं सभी शारदा सुनो शारदा के लिसनर से बोलना चाहूंगा कि आपको अगर आज के सेशन से कुछ फर्क पड़ा हो, हमें तो बहुत नॉलेज मिली है और मैंने कभी भी डिजाइन प्रोस्पेक्टिव से स्टार्टअप्स के लिए इतनी गहराई से किसी के साथ चर्चा नहीं करी, कभी नहीं सुना। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे नेक्स्ट दो आपको अपडेट्स देना चाहते हैं, एक तो कि हम लोग अगला शो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे कर रहे हैं जिसमें हमने अपने तीनों ही गेस्ट वुमेन्स को बुलाया है, और स्पेशली कम्युनिटी लिसनर्स के लिए ये बताना चाहता हूं कि वुमेन्स जैसे आता जितना एंटरप्रेन्योरशिप में आए उतना बेहतर है, और आप नेक्स्ट शो को जरूर सुने हमारे, और उसके अंदर आपको काफी इंसाइटफुल चीजें पता लगेगी कि आज के शो से ही आपको पता लगा आएगा। आप अपने घर में जितनी भी वुमेन्स हैं उनको प्रेरित कीजिए कि स्टार्टअप बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन नहीं, बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं है, आप छोटी छोटी चीजों के अंदर भी स्टार्टअप ढूंढ सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंडली हम लोग जल्दी ही शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर शारदा लॉन्च पैड के बैनर के नीचे एक स्टार्टअप क्लिनिक वर्कशॉप लगाने वाले हैं दोबारा मेरठ मंडल कम्युनिटी के लिए, उसके नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो एक जैसे डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन होता है वैसी सी क्लिनिक है। आप यहाँ पे आइए, मेंटर यहाँ पे अमित सर बैठे होते हैं, वो आप उनसे अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो आपको डायग्नोस करके लिख के देंगे, आप जाइए उसे मार्केट में इंप्लीमेंट कीजिए, फिर 10-15 दिन बाद उनके पास आइए, उन्हें बताइए सर आपसे जो सीखा था देखिए मार्केट में किया है, हम लोग ऊपर गए हैं नीचे आए हैं जैसा भी हुआ, वो आपको फिर कुछ सजेस्ट करेंगे। तो इसी एक कॉन्सेप्ट के अंदर हमने स्टार्टअप क्लिनिक का डिजाइन किया है, जल्दी इसकी लॉन्चिंग डेट आपको बताएंगे, तब तक के लिए नमस्ते।
3: अभी आप सुन रहे थे स्टार्टअप चौराहा। आज इस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें हुई डिजाइन के संबंध में, स्टार्टअप के संबंध में, और शारदा विश्वविद्यालय का डिजाइनिंग डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करता है उसके बारे में भी जाना। प्रधानमंत्री का जो सपना है कि टॉय इंडस्ट्री आगे बढ़े वो बातें भी हुई। बाल वाटिका कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में जाना। कर कमलम प्रोग्राम क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये सारी बातें हुई इस प्रोग्राम के माध्यम से। हमारे साथ जुड़े रहे डॉक्टर प्रवीण पचौरी, डायरेक्टर यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड एक्सपर्ट इन प्रोडक्ट डिजाइन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस डेवलपमेंट। हमारे साथ जुड़े रहे डॉक्टर अमित सहगल, डायरेक्टर शारदा लॉन्च पैड फेडरेशन शारदा यूनिवर्सिटी, और इस प्रोग्राम को मॉडरेट कर रहे थे मिस्टर दिव्यांशु शुक्ला, फाउंडर पेपस्वैप पॉलिसीज ओवर पॉलिसीज, वर्किंग एज पॉलिसी एंगेजमेंट पार्टनर फॉर यूपी स्टार्टअप पॉलिसी। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था शारदा लॉन्च पैड ने पेपस्वैप के सहयोग से, और आप ये प्रोग्राम सुन पा रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर। आशा करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपना फीडबैक देना ना भूलेगा 0120406025 पर। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं 90.8 FM@sharda.ac.in पर। ऐसी खास जानकारी के लिए बस सुनते रहिए स्टार्टअप चौराहा, ये खास कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से। मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
5: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
6: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
7: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
8: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
9: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे। लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है। अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगो कर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छान कर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सारे शहर में नाम तुम्हारा दीवारों पे लिखता है।
2: इतनी टाइम नहीं है सबके लिए, सबके लिए पूरी लाइफ पड़ी है। एक अच्छा सोल्जर बनना चाहता हूँ।
3: किसने रोका है?
1: सारे

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की हो गई है।
2: अरे मम्मी, सरकारी नौकरी लग गया।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब

लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसें, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचे। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं, तो इसीलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों
0: और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है, इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: माँ के दूध के साथ जरूरी है बच्चे के लिए पौष्टिक आहार।
1: केवल माँ का दूध
2: नहीं बना पाएगा बच्चे को मजबूत।
1: अतिरिक्त पोषण की जरूरत,
2: दूध के साथ ऊपरी आहार की अहमियत।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
4: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: तुम्हारा टैंक चल रहा है, अबैंडन टैंक राइट नाउ।
2: नो सर, आई एम नॉट अबैंडन माय टैंक, माय कार इज स्टिल वर्किंग, आई विल गेट दीस मास्टर्स।

0: सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि पाकिस्तानी फौज के लिए भी एक मिसाल है सर।
1: अगला परमवीर चक्र हमारे रेजिमेंट के लिए, मैं लेकर आऊंगा।
2: चलती है सांसें जिसकी, हर शख्स वो जिंदा है, जिसके जीने का मकसद हो वही तो बंदा है।
1: लड़ाई होने वाली
2: बनता है

0: हम फौजी हैं, जस्ट फॉर ऑर्डर्स।
1: अरे तो उसे भी मिला था अब जाने के लिए कमबख्त माना नहीं, लड़ता रहा।
2: एक भी देख, एक इंच पीछे नहीं हटेगा।
3: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
4: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
3: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
4: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
3: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
4: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
3: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
4: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
3: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
5: Come and explore the world of Sharda School of Media Film and Entertainment, which makes you industry ready.
6: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
5: So, where are you? The world is here at Sharda University.
7: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
8: तुम्हारे लिए बैचलर सरप्राइज पार्टी अरेंज किए हैं।
9: सरप्राइज पार्टी?
8: हाँ।
9: हमें पता ही नहीं है।
8: अरे वो सब छोड़ो यार, तुम तो तैयार हो।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें Sharda University के Sharda School of Media, Film and Entertainment Department में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन वीएफएक्स गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.
9: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: गच लागे, म्यूजिक प्रोड्यूसर थिंकर लिरिसिस्ट अजमेर बलंबिया, म्यूजिक कंपोजर मासूम शर्मा, सिंगर मासूम शर्मा, सॉन्ग नेम इज गच लागे, ऑल योर सुरुशा द 90.8 FM, सो लेट्स एंजॉय इट।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: 10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया मुक्त भारत।
1: सही पोषण, देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
4: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: ना छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में यह जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.
7: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
8: तुम्हारे लिए बैचलर सरप्राइज पार्टी अरेंज किए हैं।
9: सरप्राइज पार्टी?
8: हाँ।
9: तो हमें पता ही नहीं है।
8: अरे वो सब छोड़ो यार, तुम तो तैयार हो।

जाने हैं कहां, ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो संग बाय लकी अली, कंपोजर्स माइकी मैक्लेरी और सूरज कुलवडी, लिरिसिस्ट कौसर मुनीर। तू जाने है कहां, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।